0: 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में

0: मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है, क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई, जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
3: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को

0: हरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध मत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
2: ओ,
3: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून

0: सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
1: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: ओह, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
1: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।
3: Thank you.

0: दादी जी लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न हो
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था। शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
5: अरेस्ट करो!
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: उसके बाद क्या हुआ?
1: उसके बाद चीख होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
2: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
0: क्या कोई कार्रवाई हुई?
1: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
3: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
1: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
3: इसके बाद क्या हुआ दादी?
1: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अच्छा।
1: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
3: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
1: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
3: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
6: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है, और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
7: तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
8: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
7: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
8: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
7: अच्छा ठीक है, देविंदर आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना। मैं पूजा करने जा रही हूँ।
8: अच्छा माँ।
9: माँ, माँ।
8: लो देविंदर भी आ गया।
9: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
7: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
8: ठीक है माँ।
9: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
8: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
9: ये देखो दीदी, ये मारा।
8: देविंदर चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
9: अरे ये मारा।
8: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
9: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
8: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
9: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
7: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
8: अच्छा माँ, कौन आप लोग? कौन कहिए, किससे मिलना है? अरे
10: हमें अंदर आने दो।
8: अरे क्यों?
11: ए लड़की रास्ते से हट जा।
8: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
10: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
11: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
8: अरे
11: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
8: क्या हुआ? देखो जल्दी
7: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
10: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
8: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
10: ये चाकू देख रही है ना?
8: छोड़ दो। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करो।
7: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम।
10: चाबी
7: याद नहीं कहाँ रखी है।
11: अरे बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
7: अरे मेरे बात को छोड़ो,
8: मेरी माँ को छोड़ो।
10: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
11: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
7: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
8: देवेंद्र।
9: हाँ दीदी।
8: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं। हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
9: अच्छा।
8: हेलो।
10: हाँ बेटा बोलो।
8: पापा पापा
10: बोलो,
8: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
10: कौन घुसा है?
8: माँ को बहुत मार रहे हैं।
10: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
8: देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
9: अच्छा।
8: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
7: बचाओ।
12: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
13: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको। कशिका को कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
7: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
13: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
10: देखो ना सबकी जान बच गई।
7: बहादुर है मेरी बच्ची।
12: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
14: ഇതുവരെ കേട്ടത് ഉമംഗ് CAET സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി. അടുത്ത പരിപാടി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ. ആകാശവാണി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങൾ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പരിപാടിയുടെ ശബ്ദലേഖനം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം.
15: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
16: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
17: धन्यवाद।
16: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
17: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
16: जी,
17: विश्वास और जन कल्याण
16: जी,
17: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
16: जी।
17: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
16: बिल्कुल।
17: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
16: जी,
17: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
16: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
17: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
16: जी।
17: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
16: जी।
17: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
16: जी।
17: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
16: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
17: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
16: जी।
17: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
16: जी।
17: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM2.5 और PM10 ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
16: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
17: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
16: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
17: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो

0: रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा

0: सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे, कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी,
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है, जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है, जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है, जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है, जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है, जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें इंडस्ट्री का कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: केंद्र സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങൾ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പരിപാടിയുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത്.

0: वो चीज देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से. एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का वो काफी अच्छा है. बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए.
1: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया. हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं. क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
2: देखिए, शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर थोड़ा टिक के खेले तो शी कैन गेट अ वेरी बिग स्कोर टुडे.
1: जी बिल्कुल. और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मानधना. इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग, बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग बिकॉज वेन एवर इट्स बिग गेम्स, स्मृति ब्रिंग्स अ ए गेम.
3: 100 most influential sports persons of the world. Only 2 cricketers to find their place in Time magazine. Smriti Mandana can never go wrong, right? Abhi abhi RCB ko usne tournament champion kiya, ek baar nahi do baar kiya. 17 centuries, you never question her credibility, right? Pedigree, credibility, and even last match she got runs, right? She's not that she's out of form. She's a perfect batsman to take the innings forward. और देखिए शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है उनको रन बनाना, कंडीशंस को फेस करना. जैसे कर्नल सेड, यू कांट हिट अ सिक्स इन एवरी बॉल, यू हैव टू प्ले द बॉल टू इट्स मेरिट. और देखिए, आई थिंक द डच हैव डन द राइट थिंग बाई चूजिंग एन एक्स्ट्रा पेसर. सो इट इज, दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड एंड इट्स गुड फॉर अस, गुड फॉर इंडिया, बिकॉज बिफोर यू नीड दिस काइंड ऑफ टेस्ट. You need this kind of competition to play the bigger matches.
4: Indeed. And Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also in now. The fact that Yastika is in as a batter, even though Richa might be seen with the gloves rather than Yastika behind the wickets, does it also tell you that India is looking at the next opponent too, which is South Africa? I want to be better prepared for that, because Bharti Fulmali got just one opportunity but wasn't enough on that particular occasion. Little harsh on her, or you feel Yastika is the right move ahead because of more experience, given that there are bigger games coming up?
2: Look, if you compare Bharti and Yastika, what you have to see is what position they are going to play. Yastika is playing at number 3. And if we feel that she can fit into number 3, then it is a good idea to play Yastika Bhatia, because she has these shots to play in the power play to hit over right. The fielders, and she can get the runs. But if she has to play at number 5 or number 6, it is better to play Bharti, because she is actually tuned to play at 5 and 6.
4: Right, so it depends completely on India's approach.
2: As to where the position they are going to play.
4: देखते हैं, and वक्त हो चुका है एक और कॉलर लेने का जो इंतजार कर रहे हैं. जी हाँ.
5: हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग.
4: नमस्कार,
5: मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ. सर
4: बताइए विपिन जी.
5: सर मेरे दो सवाल थे. पहला ये था कि क्रांति गौड़ा जो शायद पिछले मैच में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई थी, तो उनके बारे में जानना था. और दूसरा ये था कि इस पिच पर कितना स्कोर हो सकता है अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो.
4: अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो, पहले बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, एंड बहुत ही सही सवाल था. अगर शेफाली वर्मा चल जाए तो, आप बताइए कितना स्कोर हो सकता है?
0: अगर शेफाली वर्मा चल जाती है तो 180 प्लस स्कोर जा सकता है इजिली, क्योंकि शेफाली का बल्ला जब चलता है तो वो धूम मचा ही देता है. और उसके साथ अगर मंदना भी जिस तरह से वो लय में दिखती हैं, दोनों अगर चलते हैं तो हो सकता है 200 प्लस भी जा सकता है जो स्कोर. तो इट डिपेंड कि शेफाली वर्मा को आज पेशेंस के साथ खेलना होगा, हर बॉल को हिट करने के चक्कर में ना जाके हर बॉलर की बॉलिंग को देखना है कि किस वे में खेलना है.
4: right.
0: क्योंकि अगर वो प्लेयर्स को देख के हिट करती है, मोस्टली देखा गया है कि वो हाथ में मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कहीं ना कहीं कैच दे ही देती हैं. उससे आज उनको बच के चलना है और फील्डर्स को देख के मारना है हिट.
4: So ladies and gentlemen, you heard it from the opening batter herself then. Now Kranti Gaur, एक ही ओवर मिला था पिछली बार, 14 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन आप देखें तो विपक्षी टीम भी पूरे 20 ओवर नहीं खेली थी, 17 में से मट गई थी पाकिस्तान, if you talk about it. So Kranti, do we have big enough a sample size to say that she's out of form? or she needs a little bit more time and rhythm, as any fast bowler would want.
3: Conditions in Headingley are just perfect for her.
4: Okay.
3: Overcast conditions, what else can a fast bowler want? And if she cannot utilize these conditions, and the opposition is Netherlands, not Australia or South Africa. Today is the day to get some wickets and get the confidence back.
1: And talking about gaining confidence back, Colonel, we saw in the previous game, Richa Ghosh was explosive. In fact, she too had been struggling for form heading into the tournament. Got a half century in the warm-up against England and then subsequently that knock of 34.
2: Yeah, she played really well. Actually, if you see in the last 6-7 matches that she's played, she's got about 3-4 overs to play in all these matches, and the only time she got a chance to play 10 overs, she got a 50. I think she got 66 in that. So she's playing very well, and if she gets a chance to play today, if her batting comes, I'm sure she'll do well.
4: All right, and what about Jemmy, who has the experience of playing in Leeds? Will that be of great effort, a great experience? The fact that you played in Leeds, does it help you as a batter sometimes?
2: Oh yes, it does help you, and I'm sure she'll play well today. Only thing is that, you know, the first 5-6 runs that you score, that you have to be careful.
4: Okay.
2: If you start hitting from the first ball, there are chances that you may get out. But what you have to see is your opposition. Netherlands has lost the last 6 matches that they've played. And they have got only one professional player. Rest are all club cricketers in a way. So the opposition is not that strong. So I suppose we should do well today.
1: Soumitra, yeah.
3: I want to add something about the Dutch.
1: Yeah.
3: Nobody is a professional. They play sport as a way of life. And even their hockey, even the women's Olympic champions, they come and play. You know, the stress levels in sport is so less that they come to play and enjoy a sport. That is why they have qualified for this World Cup, the first time they did. And they beat some big teams like Thailand and Scotland, who have played World Cups before. So they know how to enjoy a sport. They don't mind losing, but they have set small targets. If you hear their Scottish coach, Neil McRae, what is he saying? He's saying we are setting small targets, not big targets. They're not aspiring to beat India. They're trying to match India. Their aspiration is to not finish in the semi-final. Their aspiration is to finish top 8 mein hum qualify karenge. To next World Cup mein hum automatic qualify karenge. So they have set reasonable targets, achievable targets, and that's the beauty of these Dutch players. All these players who come to play, they don't put unnecessary stress ki isko out karna hai, isko run banana hai, aisa nahi hai. They come to enjoy. And that's the beauty of these teams.
4: And sometimes being an underdog does free you from all the other pressure that you might carry, isn't it? Isn't it like the car headlights then, Megha? It just shows you the next couple of feet, but that's what you need to see in order to reach your destination eventually.
3: And no high beam.
4: No high beam. Yes, no high beam.
1: Absolutely. एक और बात जो वो लगातार कह रहे हैं कि इंडियन टीम से इंस्पायर हुई है उनकी ये जर्नी और काफी सारी महिला क्रिकेटर्स के लिए वो खुद इंस्पिरेशन के तौर पर आती हैं. अब अगर हम बात करें वापस भारतीय टीम की और आज के 11 की, दीप्ति शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी में योगदान दिया, छोटा कैमियो ही खेला लेकिन ऋचा घोष के साथ वैशाली वो वापस साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी और उसके बाद तो 5 विकेट निकाले.
0: जी बिल्कुल, क्योंकि दीप्ति शर्मा एक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टीम के अंदर हरमन के साथ, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत जरूरी होता है टीम के साथ, और उन्होंने वो दिखाया है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की बॉलिंग किस वे में होती है. एंड उसके साथ अगर बात करूँ उनकी दूसरी विकेट की, तो उन्होंने जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में उन्होंने स्वीप स्क्वायर लेग रखा था और वहाँ पर स्मृति मंदना ने कैच किया था. दैट वॉज मतलब जो एक थॉट होता है वो उनका वो कम्प्लीट हुआ वहाँ पर, एंड वो माइंड में जो सोचती हैं वैसा वो अकॉर्डिंग टू फील्ड लगाती है और वही बॉल डालती है. ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की खासियत है जो हमने लास्ट मैच में देखा भी है, और मैं होप करूंगी कि आज के मैच में भी 5 नहीं उससे ज़्यादा विकेट ले. एंड उसके साथ साथ उनकी अगर बैटिंग की बात करें, उनका जो हमने इंटरव्यू सुना तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे जो कोच हैं उन्होंने बोला कि आपके लिए 5th नंबर ही अलाउ है बैटिंग का. एंड शी सेड मैं वहाँ पे रेडी हूँ, फिट हूँ वहाँ पे मैं खेलने के लिए, एंड उन्होंने वो शो भी किया.
1: शुरुआत की थी गुलफिरोजा के विकेट के साथ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उनके तरफ से, और उसके बाद आलिया को भी आउट किया था अपने अगले ही ओवर में. टॉकिंग अबाउट वॉकिंग दी टॉक, हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में जब पारी थोड़ी लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, दो जल्दी विकेट गिर गए थे, तब पारी को संभाला स्मृति मानधाना के साथ. 91 रन की साझेदारी हुई थी भूप वहां पर, और राणा बॉल ही खेल रही थी, लेकिन उनका उस वक्त पे टिकना महत्वपूर्ण था.
2: या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक विकेट और वहां गिर जाती तो हमारी टीम को ज्यादा ही अंडर प्रेशर हो जाती. बट दोनों जो से हैं बिग मैच प्लेयर्स हैं, और उन्होंने सिचुएशन को संभाला और अच्छा खेला. 91 रन्स की पार्टनरशिप, और उसके बाद फिर से दो तीन विकेट जल्दी गिरे, बट ऋचा घोष ने पूरी इनिंग फिर दोबारा संभाली और हमारे को एक बड़ा टारगेट की तरफ ले गई.
4: जी, और बात करें अगर स्मृति मानधना की, तो फिर हल्की सी जो हलचल उठती है ना इधर उधर से, लोग बोलते जरूर हैं कि maybe she gets found out when there is an off spinner in operation. क्या अभी ऐसा देखते हैं कि सीगर्स हो गई नेदरलैंड्स की तरफ से, या फिर ओवरडाइक हो गई, कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रदान कर सकती हैं?
3: क्यों नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल. All you need are 10 good balls or 10 bad shots. So that, and in T20, the margin of error बहुत ही कम है.
4: जी.
3: आपको तो चाहिए एक ही बॉल आउट करने के लिए. And why not? It's good to see Indians under pressure. अगर जितना प्रेशर डालिएगा नेक्स्ट मैच के लिए उतना प्रिपरेशन बेटर होगा. सेम क्रिकेट इज आफ्टर ऑल अ माइंड गेम. यू कैन बी कॉम्प्लेसेंट, यू कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट. एंड यू नो आई ऑलवेज से टीम्स लाइक नेदरलैंड्स लाइक द बनाना स्किन, की केला का छिलका आप कभी भी फिसल सकते हैं. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि केप वर्ल्ड या फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है स्पोर्ट में.
2: लुक, दिस विकेट इज स्लाइटली ग्रीनिश. And when a spinner is bowling in the opening overs, the ball may not turn, it'll skid through. There is a chance that it can take a outer edge and person can get caught in the slips.
0: And अभी आपने बात की रॉबिन की. अभी मैंने जो देखा है, रॉबिन काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है. ऑफ स्पिन वो डालती हैं और वो काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी वो ना बॉल डाले. क्योंकि एक रिदम में होना बहुत जरूरी होता है बॉलर के लिए, और वो अभी तक वो रिदम दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से बॉलिंग में नहीं है.
1: और यहाँ से पावर प्ले में क्या रणनीति निकल कर उतर सकती है भारत की टीम भूप, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्रीन विकेट है, कप्तान ने कह दिया है कि थोड़ा संभल के समझ के खेलना होगा.
2: लुक, वी हैव टू बी केयरफुल इन द फर्स्ट वन और टू ओवर्स एंड नॉट गो टोटली डिफेंसिव. Try to score runs and put up a big score in the power play.
4: And do you have a number in mind? The big score?
2: Yeah, it'll be over 60.
4: Over 60?
2: Yeah.
4: And this is Shefali going bang bang from the word go.
2: Both players will score, and even if a wicket falls, Gee. The number 3 batsman will also go for runs. And it's going to be a biggest score. It'll be much more than 60.
3: So you don't need to go bang bang.
4: Okay.
3: What is 10? When you say 60, is 10 per over?
4: You
3: need two boundaries and two singles. Then do we have to go bang bang? No. And it's not necessary ki pehla over se aap 10-12. See, the Dutch will come with a plan. When they select an additional fast bowler, obviously they'll have a plan. Or don't forget they are good fielders.
4: Correct.
3: Right? And fielding does matter. Ki aapko pata hai ki agar, jaise maine pehle bola ki 10 gend chahiye aur 10 bad shots chahiye. So I think pedigree,
4: जी.
3: Application, experience, जैसे आपने बोला कि हरमनप्रीत कैसे पकड़ के खेला, कैसे if they don't do, a person is going to play 200 matches, international matches, if that person is not going to apply or herself as a skipper, then who will?
4: Right.
3: Right.
4: You want to lead from the front.
3: Yes. So application has to be the buzzword, the keyword, and the Dutch will definitely come out with a plan.
4: और इस ground में अगर हम experience की बात करें तो Callis उनके तरफ से कई मैचेस खेल चुकी हैं इसी ग्राउंड पे. शी वुड अंडरस्टैंड द एंगल्स बेटर. आपको लगता है उसमें जरूर मदद करेंगी वो कप्तान की कि फील्डर को यहाँ प्लेस कीजिएगा, यहाँ रन्स भी बच सकते हैं, कैचेस भी बन सकते हैं?
3: डेफिनेटली. सी, इंग्लिश कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंडीशंस और एल्सवेयर. बॉल विल स्विंग एंड इज ओवरकास्ट. इट्स टिपिकली समर इंग्लिश कंडीशंस. एंड Callis, आई मीन यू से Callis, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर Callis who used to never was not expressly fast. He would just bowl to the line and length and let the batsman make all the mistakes. That's why, as you said, I'm sure with her inputs, her captain Babbitt would definitely put their fielders at the right places.
1: And we've seen Babita De Ligt being very inspirational throughout this journey of the Netherlands team. वापस भारतीय टीम पर आते हैं और जो बल्लेबाजी का क्रम है वो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यस्तिका भाटिया वापस आ गई हैं टीम में भारती फुलमल्ली के जगह पे और दीप्ति शर्मा को कहा गया है कि पांचवें नंबर पर वो जनरली बल्लेबाजी करेंगी, तो क्या तब्दीलियां होंगी क्रम में?
0: मुझे लगता है जहां पर अभी देखा गया है कि जैमी फर्स्ट ही डाउन आएगी एंड सेकंड उसके बाद हरमनप्रीत कौर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती है. अगर जैमी की पहले विकेट अगर गिर जाती है तो उसके बाद हरमन आएगी, अदरवाइज हमारे मुझे लगता है कि यस्तिका भाटिया आएगी और अगर ओवर्स कम होंगे तो डेफिनेटली ऋचा घोष वहां पे आएंगी बैटिंग करने, क्योंकि वो टीम का एक्स फैक्टर है और वहां पर वो अगर जहां भी आती है वहां से वो रन कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिंगल को डबल में कैलकुलेट करती है और डबल से वो फोर में कैलकुलेट होता है, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा लास्ट के 4-5 ओवर्स में ऋचा घोष से हमें.
1: जी, और क्या यही बल्लेबाजी का क्रम आप भी देखते हैं?
2: लुक, इफ यू आर गोइंग टू प्ले Jastika Bhatia at number 5 or number 6, I think we are wasting her talent. If she has to play, she has to play number 3.
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी चर्चा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत होने ही वाली है. तो जाने से पहले जल्दी से predictions लेते हुए चलते हैं. सौमित्रो, आपसे शुरुआत करते हैं.
3: 170,
1: not too dissimilar from the last game.
2: Oh yes, it'll be, score will be over 170.
0: नीदरलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है, तो I'm thinking 180.
1: So it's broadly around 175 if we try and draw an average over here. Thanks a lot to each one of you for your analysis, and we shall now turn our attention to live action as the two Indian openers, Smriti Mandhana and Shefali Verma, are heading out into the middle. Would it be 170 or 180? We try and find that out over the next an hour and a half.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: Thank you.
6: First ball, 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स लंदन में इस समय T20 विश्व कप महिला विश्व कप के तहत भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज या बैटर्स जिनको हम कहते हैं बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, सैफ अली वर्मा, स्मृति मंधना, दोनों ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। स्मृति मंधना ने पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक जमाया था और भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध जीत में मदद मिली थी। जहां तक नीदरलैंड्स का सवाल है, नीदरलैंड्स की कप्तान ने आज बेवेट डिलीड जो विकेटकीपर भी हैं उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के बजाय उन्होंने सोचा कि वो एक टारगेट को चेंज करेंगी और उन्होंने पहले भारत को मौका दिया है कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, हम आपके विरुद्ध जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। नेपाल में जो क्वालिफायर्स खेला गया था महिला विश्व कप के लिए उसमें इन्होंने पहले किया आयरिस ज्वेलिंग जो 24 साल की हैं और दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं, 101 विकेट वो अब तक ले चुकी हैं। ज्वेलिंग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड्स का ये पहला विश्व कप है, इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखना है भारत जैसी सशक्त टीम जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में महिलाओं की चैंपियन है इस समय तैयार हो रही हैं नीदरलैंड की गेंदबाज और सामना करने के लिए भारत की स्मृति मंधना बाएं हाथ की, दाएं हाथ से उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और उस धीरे से पुश किया था वाइड स्मिडॉन की तरफ लेकिन रन लेने का वहां पर कोई भी प्रयास नहीं किया। ज्वेलिंग जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करती हैं इस समय तैयार हैं और जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा हम आपको पूरी टीम का विवरण भी देंगे। फिलहाल क्योंकि मैच शुरू हो चुका है स्मृति मंधना तैयार हैं। एक बार फिर से उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर था, संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से एक अतिरिक्त रन, तो भारत का खाता खुला एक अतिरिक्त रन के माध्यम से, वाइड के जरिए मिला है ये रन और अभी तक दोनों ही बल्लेबाज एक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी हैं, सैफ अली वर्मा और स्मृति मंधना ने केवल एक गेंद अब तक खेली है और रन लेने का सिलसिला अभी उनका शुरू नहीं हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे पुल किया था, शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया लेकिन इससे पहले बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि वो दो रन जुटा लें। भारत का स्कोर हो गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नीदरलैंड्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपने रेडियो सेट्स कुछ देरी से खोले हैं हम आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच ये मैच गेंद कुछ धीमी गेंद थी, अपनी रफ्तार पर थोड़ा नियंत्रण किया और गेंद को हवा में छोड़ दिया स्विंग होने के लिए, अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, इन स्विंग गेंद बाएं हाथ के बैटर के लिए और स्मृति ने उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। नीदरलैंड और भारत के बीच T20 महिला विश्व कप का ये दूसरा मैच, ये गेंद फिर लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर की तरफ से और एक रन और भारत के खाते में जुड़ा है। भारत का स्कोर हो गया 4 रन बगैर किसी नुकसान के। हेडिंगली का ये विकेट जहाँ पर इससे पहले भी एक मैच हो चुका है, बादल मैदान में छाए हुए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाज इसमें कुछ बने। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऐसे और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों ही बल्ले बैटर्स ने अपना छोर बदला, स्मृति के खाते में एक रन और जुड़ गया, 3 रन उनका कुल स्कोर हो गया। भारत का स्कोर हो गया 5 और बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, ज्वेलिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज लंबे कद की खिलाड़ी हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि विश्व चैंपियन भारत के विरुद्ध वो अपने आत्मविश्वास को समेटें और अच्छी नियंत्रण के साथ 94% उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण रहता है उनका और देखना है ज्वेलिंग अपनी इस अगली ओवर गेंद में क्या कुछ कर पाती हैं। दाएं हाथ के ओवर द विकेट गेंदबाजी करने वाली, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गए, कट किया उसे और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: ज्वेलिंग की ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, हवा में अपना आर्म के साथ छोड़ी थी गेंद को, टप्पा खाने के बाद उछली थी गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट किया था शैफ अली वर्मा ने 4 रन के लिए। एक गेंद अब तक शैफ अली ने खेली है, उसमें चौके के साथ अपना खाता खुला है। भारत का स्कोर 9। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से इसे पुश किया था, कोई मौका नहीं लेना चाहती शैफ अली वर्मा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक वो बल्लेबाजी कर रही हैं पिछले जो घरेलू टूर्नामेंट है उसमें बहुत ज़्यादा असरकारी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाई थी, लेकिन लिहाजा वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए खेलना चाहती हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ। विश्वनाथ,
3: वेल गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Well, this is the first World Cup. They are the debutant Netherlands, and when the last game they played against Bangladesh, it was a bit of a close encounter. And today is a very busy day. 3 headers: India playing Netherlands, and you got the other 2 games going on also. One, in fact, Bangladesh has lost to Australia by a mile, and South Africa and Pakistan play. First ball is handsomely driven by Smriti Mandhana up to mid on, no run. Well, it's a kind of a you know, grouping that India has, that they got 2 major opponents here. One is of course South Africa and Australia. So it's not an easy group through. Next ball, she draws, mistimes, drags the ball up to wide-ish mid-on. Wants a run. It was there actually. I said they make it in the end comfortably. So none for 10. We are in just the second over. It's Seegers. She's bowling. And Heath Seegers, she opens, in fact, the batting for Netherlands. And she's got a sister also playing the same game, isn't it? It's quite amazing. Silver Seegers. Here is Heath Seegers. Up she comes now with her off spinners. And she's getting the ball around over the wickets to Shefali. Comes in now short, and he hits it hard off the back foot. It's going down towards the extra cover fence. The ball should win the race as that ball runs away for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
3: Well, that was too friendly. It was short and wide and spinning away and was easily put away by Shefali Verma. So, but I feel this is this kind of game that you can improve your batting average at times. The Indians don't take Netherlands lightly. Seegers in just a couple of paces, runs and bowls down the leg side, and it's been worked away towards a wide-ish mid-on. Runs with the strike for an easy single. And India move up to 15. Just to give you what happened with the toss. Netherlands won the toss and preferred to bat second. It was a bit surprised. I felt their weapon probably was the bowling. And it's such an inexperienced side. I'm sure we're going to talk a little bit more. Next ball is nicely tossed up. And a brilliant dive. And that can't get past her. This is running down towards the extra cover fence for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
3: When Smriti placed that cover drive, I think that's an absolutely very elegant offer to see that. She's a delight to watch when she placed that cover drive, and a beautiful timer of the ball. And he played well against Pakistan the last game, and the Indians are not taking Netherlands so lightly. So India move up to 19, one ball to go in the second over after they've been sent in by Netherlands. If you just joined us, with Smriti on 8 and Shefali on 9. Last ball of the first over from Seegers coming in, as she's going to ball right arm round the wickets, slower, and she has to reach for it, and then she drives beautifully. It beats cover and extra cover. That'll be another 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
3: Well, that sort of a pace and spin, I'm sure the Indians are going to enjoy the bowling of the Netherlands at the moment now. So Goswami, I think, you know, would you say winning the toss and batting second was the best option for Netherlands?
1: लगता है कि भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, तो उनको लगा होगा ऐसा कि एक बार परखा जाए और कोई एक टारगेट जो बनाती है भारतीय टीम, एक अगर मौका देती है तो क्या कुछ कर सकते हैं वो, तो इस तरह का एक उनके दिमाग में रहा होगा कप्तान के, और उन्होंने पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का मौका दिया है। और उन श्रोताओं के लिए कि आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच में महिला विश्व कप का ये मैच चल रहा है, रहा है ज्वेलिंग, आए हैं अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैट फुट पर गए, मिड विकेट की तरफ गेंद को धीरे से प्लेस किया है, एक ही रन मिल पाएगा। सैफ अली वर्मा का स्कोर हो गया, इसके साथ ही डबल फिगर में 10 रन 5 गेंदों का सामना किया। स्मृति मंधाना इस समय खेल रही हैं 12 रन के स्कोर पर और भारत का स्कोर 24 रन बगैर किसी नुकसान के। 2.1 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। भारतीय टीम जो इस मैच में खेल रही है, हम आपको बहुत तेज़ी से बताएंगे इसके इस ओवर के बाद में। और एक बार फिर से ज्वेलिंग दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे गई और शॉर्ट कवर्स की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई मौका नहीं रन लेने का। और एक बार फिर से ज्वेलिंग हल्के हल्के कदमों से अपने गेंदबाजी के रनअप की ओर आ रही हैं। स्मृति मानना, सैफ अली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कप्तान हैं, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा इस समय भारतीय टीम में खेल रही हैं। ज्वेलिंग एक बार फिर से दाएं हाथ से उनकी गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गई, ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फील्डिंग वहां पर हो गई है, फील्डर खड़ी थी, बहुत तेजी के साथ उन्होंने गेंद पर झपट्टा मारते हुए फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि वो रन लेते हैं। भारत का स्कोर इसके साथ ही हो गया 25 रन। स्मृति का स्कोर है इस समय 13 रन और अब सैफ अली वर्मा 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर सामना करने के लिए ज्वेलिंग की अगली गेंद का हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए जा रही हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फिर से और धीरे से उसे प्लेस किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर हैं वहां पर, एक ही रन मिलेगा और एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और सैफ अली का स्कोर इसके साथ हो गया 11 रन। स्मृति अब सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर। हालांकि पहली बार नीदरलैंड्स को इस विश्व कप में मौका मिला है, नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में चौथी टीम के रूप में उन्होंने क्वालिफाई किया था और उनकी कप्तान इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि वो इस विश्व कप में भारत जैसी सशक्त टीम के सामने जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की, उनके सामने अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ज्वेलिंग एक बार फिर से 5वीं बार इस ओवर में आ रही हैं, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फिर से अपनी जगह पर खड़े होकर वाइड इस मिड ऑन की पोजीशन की तरफ खेल दिया, रन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और स्मृति मंधना जो कि भारत की बेहतरीन बल्लेबाजों में

0: Is gone. India really going well, none for 42.
1: भारत का इस समय स्कोर काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जैसा कि श्रोताओं को जानकारी होगी कि 20 ओवर के मैच में 6 ओवर पहले जो फेंके जाते हैं वो पावर प्ले के रूप में, जहां पर 9 खिलाड़ी विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ में 9 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके अलावा 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं और उसके बाद 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर और उसके अलावा शेष खिलाड़ी घेरे के अंदर। इस समय 42 रन का स्कोर है भारतीय टीम का और उन एक कदम आगे बढ़े अगली गेंद थी ज्वेलिंग की और ड्राइव किया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत इस टूर्नामेंट में 4.1 ओवर का खेल हो चुका है और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही है। और उन श्रोताओं की जानकारी अगर लेना चाहें तो हीदर सीजर्स जो टीम है इस समय खेल रही है, हीदर सीजर्स, फीबी मॉलकेनबोर, बेवेट डीलेड, स्टीर कैलिस, रॉबिन रिस्क, फ्रेडरिक ओवरडिस्क, आयरिश ज्वेलिन और मर्थ वैन डेन राड, कैरोलिन लैंग, सिल्वर सीजर्स। इस बीच इस गेंद को धीरे से पुश किया था और पूरी तरह से फील्ड वहाँ पर सजी हुई है, बहुत ही रक्षात्मक फील्डिंग जिसे कहते हैं कि हर स्ट्रोक पे नज़र है नीदरलैंड्स के फील्डर्स की और वो पूरी तरह से इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत की टीम को रनों की बाढ़ बनाने से रोकें। इस बीच ये गेंद बैकफुट पे गए और ड्राइव किया उसे बहुत तेजी के साथ 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: इस समय भारत का स्कोर हो गया 46 रन, 4.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। इस ओवर में 2 चौके पहली गेंद पर और तीसरी गेंद पर लगे हैं और इस समय भारत धीरे धीरे अपने प्रयास में है कि ये जो पावर प्ले है वहाँ पर उसका स्कोर कुछ इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले खिलाड़ी एक रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें। इस बीच ज्वेलिंग की ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इस गेंद को ऑन साइड में, ऑन ड्राइव बहुत तेजी के साथ जा रही है और बिल्कुल सीमा रेखा के पास गेंद को रोका और इस बीच बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। स्मृति का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 23 रन और 2 रन उन्होंने लिए। 23 रन पर खेल रही हैं स्मृति और बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन देख रहे हैं अंपायर के कहीं उनका जूता लग तो नहीं गया। लेकिन अभी फिलहाल 48 रन 4.4 ओवर के खेल के बाद ज्वेलिंग मध्यम गति की तेज़ गेंदबाज हैं और स्मृति इस समय खेल रही हैं 23 रन के स्कोर पर, 16 गेंदों का सामना किया है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सैफ अली वर्मा जो भी 23 रन उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है, 10.29 की औसत से रन बन रहे हैं। इस बीच ये अच्छी गेंद थी, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक उछली, सुरक्षात्मक तरीके से उसे खेल दिया और एक डॉट बॉल यानी कोई भी रन इस गेंद पर नहीं बना है। भारत की स्मृति ईरानी को 3 चौके और चाहिए और T20 में उनके 600 रन। इस बीच में ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार धीरे से पुश किया था कवर्स की तरफ, लेकिन फील्डर हमारे स्टेटिशियन मनोज कुमार ने बताया कि भारत अपना 222वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। भारत के अभी तक 122 मैच जीते हैं और 93 मैच हारी है, जबकि 4 मैच बारिश के कारण या अन्य कारण से रद्द हुए हैं। विश्वनाथ,
0: well, the amount of T20s are getting played, I feel, you know, maybe after 10 years you could see each of these cricketers playing 300, 400 T20s and I'm sure 10 years before we were all talking, you know, if someone hits someone placed 100 test matches, that's a, you know, that's a something, a monumental feat. Now it's all gone. Maybe after 20 years' time, we'll see team, each individual member playing 300, 400 T20s. And let's say the world is moving on. 222 T20 internationals for India till now, and they won 122 of them. They lost 93 and 4 produced no results. So this Dutch team has been quite amazing and interesting because they came the hard way. Change in bowling now. Van der Waart, she's going to bowl, and Van den Raad, I should be. She's replacing Van der Warning. So and she's going to bowl to Shefali Verma. Round the wickets, right on Owen Bowles, and she gets a top. It's in the air. What's going to happen now? We're going to see. No, it falls safe, and the. the fielder over there, Carolyn D. Lee, she was running behind, but a couple of runs, I believe, to Shefali Verma. She goes up to 25 from 13. I was just looking at the road to Netherlands, you know, this World Cup. It was quite interesting because they contested the European qualifier in May and then the Emerging Nations Trophy in 25 and the World Cup qualifier in Jan 26. So when, and we're just talking about Caroline de Leet, amazing cricketer. She's a doctor by profession and she dropped that profession now. I was very serious about representing Netherlands in World Cup. Van der Radbelt on the wicket, Fuller, and has been played firmly up to mid wicket. I think she was surprised by the full toss, which came just above the knee roll for Shefali Verma. And she's not been in great form of late, and this is one of the good matches that probably she can get to a good score. 25 from 14 deliveries. India's 50s up in just the sixth over. They're racing away now after being sent in. Next ball is down the leg side. Wraps her on the pan. The keeper fails to collect that. They'll run a leg by, if I'm not wrong. First extra of this game. And at this speed of 108.1 kilometres, not bad for any, you know, developing fast bowler. 51 on the board. 5.3 of it's gone. This is the last over before the field spreads. And if you look at the restrictions in the power play, only two fielders are allowed outside the circle. So that's what the current state is. India, well, they've got a good foundation now thanks to these two openers, left and right combination. And now for the left-handed, Mandana, she's going to bowl. Oh, the wicket comes and bowls. Oh, that was too far, wide down the leg side. Now leg by. Correction, another wide. And it's 52 for now, as we are in the sixth over. Well, I feel if you look at the World Cup here, and I think most of the games have been won chasing. And it's not easy to chase, I feel, you know, when you look at something at 180, 190, even 200 above. No centurions in the World Cup so far. Next ball again down the leg side. She's not getting a line right. Probably she should bowl round the wickets to the left-handed Smriti Mandana. That would be more ideal. It's a long over. Five runs off it, three extras and two of a top edge. Wenderad, she's got a very high arm action and pretty tall, I would mean, by all means. And I was just looking at the Netherlands lineup, Heath Segers and for Molenbor, and then the captain Dealey. Next ball again down the leg. So it's a two wide, Delery, I tell you, three wides in a row. And that certainly wouldn't impress the captain. Now, captain now comes and has a word. I think she's asking her to bowl around the wicket. That's more sensible. And she's got three legal deliveries left in this over. Long over indeed. Frustration. And now she tells the umpire she's going to bowl around the wicket. It'll be more sensible. But she's able to get the ball wobble a bit. The ball is swinging, no doubt on that. And that's the line to bowl. Pitch the ball up and let the ball do the talking in these tracks in Leeds.
3: Agashwani. ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലീഡ്സ് ഹെഡിംഗ്ലിയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്സും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ 24 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മലയാളത്തിൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കാം. ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അമൃത വൈശാഖ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധ ശേഷി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ സുപ്രധാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. G7 ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ US പ്രസിഡന്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ദേശീയ സുരക്ഷയിൽ രാജ്യം ചരിത്രപരമായ പരിവർത്തനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി. ലോകത്തെ പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. കൊച്ചി റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തിവർദ്ധൻ സിംഗ്. റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകളുടെ സേവനം വലുതെന്ന് കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി. കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് പോർച്ചുഗൽ കോംഗോയെ നേരിടും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധ ശേഷി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ സുപ്രധാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഫ്രാൻസിലെ ഇവീനിൽ നടക്കുന്ന G7 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി സന്തുലിതവും

0: minutes now. So 8 is gone. India going at 9 an hour. None for 72.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय महिला विश्व कप जो कि 20-20 ओवर का विश्व कप है खेला जा रहा है इंग्लैंड की धरती पर और भारत का इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है। पाकिस्तान को पराजित करके भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं महिलाओं ने। और नीदरलैंड्स का जहां तक सवाल है, नीदरलैंड्स ने इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध एक मैच खेला था और उसमें वो पराजित भी हो चुकी हैं। तो नीदरलैंड्स जो पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किया है, देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव नीदरलैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है और इस समय 72 रन भारत का स्कोर 8 ओवर्स की समाप्ति पर। स्मृति खेल रही हैं 32 रन पर और शेफाली खेल रही हैं 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। और वांडे वार्निंग आई हैं अब नई गेंदबाज के रूप में, पहली ही गेंद वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त रन और जुड़ा है और अतिरिक्त रनों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर हो गई है। 11 रन अभी तक दे चुके हैं 8 ओवर के खेल में अतिरिक्त रनों की। ये अतिरिक्त रन बहुत महंगे पड़ते हैं कई बार ऐसे मौक़ों पर जबकि मैच बराबरी की स्थिति में आता है, तो उस समय ये जो अतिरिक्त रनों का एक बोझ होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा दिया है और लेकिन कोई फील्डर नहीं है, बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अब जाके गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाजों के पास पूरा समय था रन लेने का। सैफ अली ने बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 2 रन पूरे किए, 32 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और भारत का स्कोर इस समय 75 रन बगैर किसी नुकसान के। T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड एंड वेल्स के तत्वावधान में खेला जा रहा है इस समय और भारत जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप खेला गया था गत वर्ष उसमें चैंपियन है, दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया था और नीदरलैंड इस समय एक तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कमजोर टीम। 75 रन भारत का स्कोर 8.1 ओवर के खेल में अब तक हो चुके हैं और शेफ अली वर्मा अब तैयार हो रही हैं, 32 का व्यक्तिगत स्कोर है इस समय उनका और देखना है शेफ अली जिनको रनों की बहुत ज़रूरत थी इस समय तैयार हो रहे हैं। वांडे वार्निंग इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और भारत के अब तक कोई नुकसान नहीं, वह अंपायर से वो बातचीत कर रही हैं वांडे वार्निंग और वो देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाती हैं। वो गेंदबाजी करने का सिलसिला निरंतर जारी है लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वांडे वार्निंग जो कि गेंद कर रही हैं, पहली गेंद वाइड फेंकी थी, दूसरी गेंद के साथ आ रही हैं शेफ अली वर्मा को, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और इस समय विकेट के पीछे उसे कप्तान ने गैदर किया, कोई रन नहीं हुआ। 73 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के इस समय हो चुका है।
0: Well, that's the line. That's the line to bowl. Fuller just outside the off stump. Beautifully bowled.
1: जी जी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से, थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यक है। और इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को ड्राइव किया था, गेंद हवा में उछली हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: वार्निंग की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बेहतरीन तरीके से उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, हालांकि गेंद हवा में थी लेकिन कोई फील्डर वहां नहीं था और शेफ अली वर्मा के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका ये निकल के गया है। अब तक उन्होंने 6 चौके जमाए हैं 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर में। एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी लेकिन अपना सर झुकाया और उसे जाने दिया विकेट कीपर के पास में।
0: Well, I don't see the Indians good hookers of the ball, hookers or pullers of the ball, and it really surprised Shafali for sure.
1: यह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27वां मौका है जब शेफाली और स्मृति मंधना ने पहले विकेट के लिए भागीदारी की है 50 या उससे अधिक की। मनोज कुमार ने बताया इस बीच ये गेंद और ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत का स्कोर 83 रन बगैर किसी नुकसान के इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों ही बैटर्स या बल्लेबाज खेल रहे हैं।

0: स्मृति मंधाना 32 पर, सैफ अली वर्मा 38 पर। नो बॉल का इशारा भी अंपायर ने किया है और अब जाके एक और फ्री हिट मिलेगा भारत को। सैफ अली तैयार हैं फ्री हिट लेने के लिए और जिस तरह से गेंदबाजी की थी, ऊंचाई पे उछलती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने भी देखा था हिट, और उसको फ्री हिट दिया है अंपायर ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जोड़ा है। 14 रन अब तक अतिरिक्त रन के रूप में दे चुकी हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज, 84 रन बगैर किसी नुकसान के। वार्निंग जो गेंदबाजी कर रही हैं, वार्निंग काफ़ी अच्छी गेंदबाज मानी जाती हैं, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है कि विश्व चैंपियन के सामने एक नई टीम उतरती है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, और वही लगता है नीदरलैंड्स के साथ। इस बार इस गेंद को उठा दिया है, देखना है, लेकिन फील्डर उसके 30 गज के घेरे के बाहर की तरफ खड़ी थी और पहले टप्पे के साथ में गेंद फील्डर के हाथ में गई और इसके साथ ही ये ओवर भी समाप्त हुआ।
1: Well, that's a good comeback, isn't it? She got a nail ball, which was just above the waist of Sheff Ali, and then she followed with a wide, and then a dot ball. So it's a good comeback by all means, Verwender. It's still there, 3 balls remaining in this over, and the run rate now inching towards 10. It's 9.88 precisely, 84 for Nola, so the ninth of her warning balls. She thrashes this one on the offside, straight to the fielder at cover point, no run, and 2 dot balls in a row. So we've seen 3 wides and 1 no ball in this over. I think, you know, that's going to be a real frustration. We'll see how many extras in this game so far. How many wides, how many byes? I mean, 14 extras. It's quite extraordinary. We are inside the 10th over, so that's quite high. 15. In fact, 15. That's what... 15 wides. It's quite extraordinary in a T20 game. The next ball has been flicked away on the onside. It's going down to its deep backward square. Just a single. And in comes the throw from... Caroline De Lange. It's none for 85 and 1 ball to go in the ninth over. Now the speed of Vander Wunning is around about, I would say, 108 to 115. And I feel that the fast bowlers from Netherlands have done a good job in this game so far. But the only problem is they haven't got the line and length clear. On top of that, plenty of wides. And the ball is still, you know, just moving around. There's something there for the medium-paced bowlers. As we've not seen the keeper standing up to the stumps for the fast bowlers. Only on a couple of occasions I've seen that. Netherlands, a very small country with a population of 1.8 crores. And Dutch is the language they speak. And they're loving cricket now, moving away from football. Here is Vander Wunning. But around the biggest balls, and she drives and misses and through to the keeper. First time the ball is beaten the bat. And a long over again, Vander Wunning has bowled 2 overs, none for 25. And after 9 overs, it's none for 85. And 11 more overs to come off of this, I think. Just looking at the clock, you know, 45 minutes ago and they bowled just 9 hours, which means it could be, you know, penalised towards the later half of the game. But I feel this is one game where 200 looks there, isn't it?
0: जी, जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है, निश्चित रूप से एक उम्मीद बन रही है कि भारत की ये महिला खिलाड़ी अपनी इस पारी को बहुत आगे तक ले जाएंगी। लेंगे एक बार फिर से लेग ब्रेक गेंदबाज और ओवर पिच गेंद थी, उसे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: यशवंत चार्ट जो बहुत ही हमारे स्कोरर हैं, अनुभवी स्कोरर, लेग साइड में ये पहला चौका लगा है, ये बताया है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी। और 89 रन बगैर किसी नुकसान के 9 ओवर की समाप्ति के बाद ये 10वां ओवर चल रहा है। डी लैंज इस समय गेंदबाजी कर रही है। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फिर से 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: डी लेंगे अब जाके जमीन पर अपने हाथ रगड़ रही हैं, गोया की गेंद उनके हाथ से छूटी है, कुछ नमी सी है हाथ में। और इस बीच दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं डी लेंगे, और देखना है कि वो अपनी गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को कोई प्रभावित कर पाती हैं या नहीं। इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल चल रहा है, भारत की रनों की संख्या बढ़ती हुई 93 पर पहुंची है। और डी लेंगे एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट उनकी गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए को धीरे से कट किया था पॉइंट की तरफ फील्ड।

0: के हाथ में और दोनों खिलाड़ी हालांकि क्रीज से बाहर निकल चुके थे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जब तक की गेंद पहुंचती और गेंदबाज उसको विकेट्स पे लगाती दोनों ही बैटर सुरक्षित अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी, बहुत आगे निकल चुकी थी। स्मृति मंधना बहुत ही किस्मत वाली रही कि इससे थ्रो बहुत धीमा आया और अन्यथा भारत को एक नुकसान उठाना पड़ सकता था, बहुत महत्वपूर्ण विकेट होता। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया, कवर्स की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, अब जाके गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक एक रन और शैफाली वर्मा ने अपने खाते में जोड़ लिया है और भारत का स्कोर निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए और जिस तरह सा का पिछली गेंद पर एक मौका था नीदरलैंड्स के लिए स्मृति मंधाना को रन आउट करने के लिए, शैफाली वर्मा 48 रन पर जा पहुंची हैं, 32 गेंदों का सामना किया है, 150 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रही हैं इस समय। स्मृति 32 रन के स्कोर पर खेल रही हैं जो पहले आगे थी, अब शैफाली से थोड़ा रनों के मामले में पीछे आ चुकी हैं, लेकिन स्मृति मंधाना जिस तरह से खेल रही हैं, इस बार ये गेंद थी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देखा गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव किया था वाइड मिडऑन की तरफ, एक रन अपने खाते में जोड़ा और उनका स्कोर हो गया 33 रन, 28 गेंदों का सामना किया है स्मृति मंधाना ने और शैफाली खेल रही है इस समय 48 के स्कोर पर, 2 रन अगर वो और बना लेती हैं तो ये एक अर्धशतक उनको एक नई ऊर्जा भी देगा। इस बीच ये गेंद ऑप्शन के काफी बाहर थी, ड्राइव किया इसने मिड ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन ही मिलेगा और भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर जा पहुंचा है 96 रन बगैर किसी नुकसान के।
1: So 96 from 10 overs. India really in firm control of this game in the first half, and 200 probably I feel could be there. We're just talking about Netherlands as a country, a very small country with 1.8 crore population, and Dutch is the language, which got a bit of a German mix into that. And they all these years, their first last main footballer, keep saying about that, but these people have done something a little different. The men's team also does a good job in cricket, so it's just a question of time before we see them play international ODIs and Test matches. Long way to go. And Manoj, our statistician, comes with some kind of a record to keep us heavily engaged. Highest score in power play for India in World Cup, 59 in this game at Leeds, 59 for 3 versus Australia in Cape Town in 2023 semi-final, 54 for 2 versus Bangladesh in Perth 20, and 51 for no loss against Bangladesh in Bengaluru 2016. Wender Rad Bowles beautifully driven, beats a fielder at cover, diving save by Frederick, and I tell you it was a wonderful save indeed, and appreciated by the whole team. Was it a catch? I'm not sure whether it carried or not, but we'll just pick it up. And Shefali has got to 50. That's what everyone wanted. The whole country has been chasing about Shefali's form, and finally she found some form today. 50 from 34, and acknowledged by her batting partner Smriti Mandana. It was driven officially. I tell you, that was a catch. That'll go in as a dropped effort. And it was in the air, and unfortunately she couldn't grab it with both hands. Frederick was the fielder, and she races her bat. Shefali, 50, not out. So India is going on well now, and they are 97. And Shefali's runs predominantly have come on the offside, 28 of them, and balance on the onside. So that's been the mix. Vandenrad had a long over. She is in her second over. None for 11 from 1.1. A worried looking captain standing behind the stumps. As next ball, Shefali comes and lifts it high over long on. This is running down towards the fence. No, it won't go for 4. Misfield there, and she recovers well enough. And they settle for a single. So Smriti on 34 from 29. And Shefali 50 from 34. 98 on the board, 11th over. And that strike rate of Shefali looks very healthy. 147 is the strike rate of her. And we don't see the centurion so far, right, in this World Cup? I think so. We don't have a centurion in this World Cup. Vandenrad. We'll give you bowling analysis also, along with the extras they have conceded in a while. Shefali with a high back lift now faces the next ball. Down the wicket, she bowls. She beats him. Oh, I tell you, that is a great delivery. I don't know how it missed the outside edge of the bat. That came from a blind spot. Beautifully bowled by Vandenrad, and it was not far away from the edge. It was an amazing angle. She's comprehensively beaten all ends up. That is a beauty, I tell you. one of the finest deliveries of this game so far, and that's been done by Vendon Red. Up she comes now, round the wickets and bowls, short, she pulls away, wide of mid-on, this is running down towards the fence, and won't go for four. There's a fielder there patrolling, and a wideish mid-on sends in the return. Was it the 100 is up? Not sure, but Shefali's 51 from 36 with the help of 9 fours. No sixes in this game so far. In fact, the last game that Netherlands played against Bangladesh, there was no six in that from the Bangladesh side. From Netherlands side. It was a closely contested game, and we've seen some surprises happening. Australia field is a pretty strong thing. Next ball, she comes down the track. Shefali hits it high, it gets a thick outside edge, and it's running down towards deep backward point. Just a single, the 100 is up, and the 100 is a fine opening partnership for the first wicket, undefeated till now. Smriti Mandhana 35 from 30, and Shefali's been the dominant partner, 51 from 36, 10.5 overs, one to go. It's been a good over so far. Four came from the first five deliveries. Shefali just turning an inch outside the batting crease now. Five had to be inside the circle. Next ball, she gets one, pitched up, driven beautifully between cover and mid-off. This will race away for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: The 265 boundaries in this World Cup so far. We all thought that that would end up as a good over. Four came from the first five deliveries, and then the last one was pitched up and driven handsomely through the mid-off and cover fence for four. So India really playing well. They're in a very strong position. It won't be easy for the Dutch girls to come and chase anything in excess of 180. And there's something there for good fast bowlers. The Netherlands team has never found the rhythm. We'll give you the bowling analysis in a while, as I keep saying. And the most busiest month for all sports lovers all across the globe. It's been a month to keep your ears engaged with radio. So all in all, we'll be bringing all the matches of the Indian games and this T20 World Cup played in England. And the proceedings so far, Goswami, has been extremely good for India.
3: जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय बैटर्स यहाँ पर अपना हुनर दिखा रहे हैं, और शेफ अली वर्मा, जिनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, ये गेंद, अगली गेंद, नया ओवर का पहला गेंद, और उठा दिया है इसे एक टप्पे के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
3: इस समय भारत का स्कोर 108 रन बगैर किसी नुकसान के. एक शतकीय साझेदारी दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स ने की है, स्मृति मंधाना और शेफ अली वर्मा. बहुत मजबूत इरादों के साथ खेल रहे हैं. सीगर से एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, उठा दिया है गेंद को, पर पहले टप्पे के साथ गेंद, देखना है जाए, बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है. 6 रन का इशारा अंपायर का.
2: ये लगा आभा का छक्का.
3: भारत का स्कोर इस समय 114 रन बगैर किसी नुकसान के. जिस तरह से गेंद को उठा के बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया था उन्होंने, एकदम उछाल कर मारा था, और गेंद हवा से बतियाते हुए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए गई थी. इस बार ये गेंद एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव किया से कवर की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर, उसने गेंद को फील्ड कर लिया. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इस समय भारत का स्कोर बढ़कर हो गया 115 रन. 11.3 ओवर का खेल इस समय पूरा हुआ है, और रन रेट 10 रन प्रति ओवर की. इस तरह में बहुत ही मजबूत रगड़े के साथ भारतीय टीम अपना स्कोर बढ़ाती जा रही है. क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं यहां पर ताश के पत्तों की तरह से पारी बिखर जाती है, और कहीं रनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है. एकमात्र छक्का भी इस मैदान पे लगा है, और इस बीच ये देखना है कि गेंद 115 रन पर भारत को पहला झटका लगा है. शेफ अली वर्मा आउट होकर वापस पेवेलियन जा रही हैं. जिस तरह से गेंद को फ्लाइट किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अपनी जगह पर खड़े होकर गेंद को उछाल के मारा था, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार इस गेंद को बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई फील्डर ने अपने हाथ में लिया, और ये पहला विकेट भारत का गिर चुका है. सैफ अली वर्मा जो बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही थी, और उनको ज्वेलिंग ने कैच किया सीगर्स की गेंद पर. 55 रन बनाए 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और विश्व कप में ये पहला अर्धशतक है।

0: run rate almost touching 10 and over. Well, they're doing well now. So we're just looking at the centurion. There have been one centurion in this game. One for 120. Next ball, Smithy comes down, gets it high over extra court. This is running down towards the fence. Will it go for four? And, oh, that's a great save indeed. She'll get a couple of runs for sure. And she gets to her 15 lead. 50 from 36 as the Indian team stands up in the dugout, appreciating another half century. 35-50. Manoj Kumar's statistician is bang on. 30 never's gone. One for 127.
1: स्मृति ईरानी का ये बहुत स्मृति मंधाना का बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस समय 50 रन वो बना चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना का एक विशिष्ट स्थान है. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो खेल रही हैं आज लगता है कि वो काफ़ी बड़ा स्कोर करने की ओर बढ़ रही हैं. हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ किसी भी पल परिस्थितियाँ बदल जाती हैं. शैफाली वर्मा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही थी लेकिन एक ही गेंद आउट होने के लिए काफ़ी होती है और इस तरह से शैफाली ने अर्धशतक जमाया. भारतीय के इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आज बहुत अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया, एक ऐसा मजबूत आधार बना दिया है कि आने वाली टीम के खिलाड़ी इसको और अधिक मजबूत कर सकेंगे. 127 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. स्मृति खेल रही है 50 पर, जेमिमा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 8 रन के स्कोर पर. 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. ओवर डिस्क अब गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं. दाएं हाथ की इनकी गेंद, स्टंप के बाहर गेंद को कट किया था, कवर और कवर पॉइंट की तरफ पर इस समय फील्डर के हाथ में जाती. तब तक बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और भारत का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 129 रन एक विकेट के नुकसान पर. ओवर डिस्क इस समय गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रही है. स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा नीदरलैंड की टीम को. नीदरलैंड्स की टीम जो कि पहली बार विश्व कप में अपना पदार्पण किया है. नेपाल में खेले गए क्वालिफायर्स में उन्होंने अपने आप को इस योग्य बनाया. इस बीच गेंद थोड़ी हवा में थी मिडॉन की तरफ लेकिन फील्डर बहुत पीछे खड़ी थी. रन लेने का मौका दिया पूरा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को. स्मृति का स्कोर 50 रन, अभी भी 36 गेंदें उन्होंने खेली हैं और जेमिमा का स्कोर हो गया 11 रन इस एक रन के साथ. 130 रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर 9.75 के औसत से रन आ रहे हैं और काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है एक आधार भारत ने रख दिया है और लगता है कि भारत नीदरलैंड्स के विरुद्ध काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा स्कोर करने की ओर कदम बढ़ा रही है भारतीय महिला टीम. और देखना है कि किस तरह से ये राउंड विकेट हमारे आते हुए गेंद को ड्राइव किया है. हवा में थी गेंद, फील्डर के पास पहले टप्पे के साथ आई और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए एक ही रन मिलेगा 51 रन स्मृति मंधाना का स्कोर हो गया. इसके साथ ही 131 रन भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर. हेडिंग लेके इस क्रिकेट ग्राउंड में जहां 17,000 की क्षमता है, दर्शक क्षमता काफ़ी बड़ी संख्या में लोग और यहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं. इस बीच शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को लपेट के मारा है, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद को मारा है ऑन साइड में जेमिमा ने, लेकिन एक ही रन उनको मिलेगा. 12 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. 132 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर. 13.4 ओवर्स का खेल हो चुका है और एक बार फिर से उन श्रोताओं को बताएं कि भारत ने जिस गति से रन बनाए हैं 9.66 रन प्रति ओवर उनकी. अरे इस गेंद को ड्राइव किया है स्मृति ने लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई थी और अब जाके गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा उनको. स्मृति मंधाना का स्कोर इस समय 52 रन 38 गेंदों का सामना करने के लिए के बाद और इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 10वां संस्करण महिला T20 विश्व कप का. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिसने सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन किया है विश्वनाथ.
0: Well, the Australians have been the most dominant team in this World Cup so far.
1: Over disc का ये आखिरी गेंद थी उनके. शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को मारा है बाउंड्री डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 137 रन 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर. विश्वनाथ,
0: well, I think now if they don't hit 200 in this game, I'll be disappointed. So I'm sure they're just scoring at almost 10 an hour. And it's one of those games where you probably as a batter, if you're not found form, you can find form, because some of the bowling effort from Netherlands has been too friendly, and bowled a lot of half crackers, the spinners, and the fast bowlers unfortunately couldn't find the rhythm, and it's been so far India's way. And I think there's a break on going on, actually, as such. And if you just switched on your radio sets, what's the reason here? Netherlands won the toss and they preferred to bat second. And there the openers have got half century. And Mandana continues a good form where she left against Pakistan. And the 50-50 World Cup champions now will find a great opportunity to break the jinx and then take over this World Cup. It's not so easy, but... Well, I think, you know, it's another World Cup where I feel three or four teams are very strong in contention, including, I probably will say, England, because England are playing the home soil. Then we got Australia. Of course, India is also a strong contender. And on the other side, if you look at, we've not seen much surprises in this World Cup in terms of lesser-known opponents beating higher-ranked teams. Though Bangladesh probably had a bit of a tough time against Netherlands in the first game on last Sunday. But I think Netherlands, I see a lot of promise in this Netherlands side. They got some good serious talent. And just to tell you about this Dutch girls, you know, when they were playing the tri-series a couple of months before, most of them were flying in and out of Netherlands to finish their exams, so which is quite extraordinary, isn't it? And the love for the game continues, no doubts. So the last game against Bangladesh, their first World Cup match, they scored 139 for 8, and Bangladesh chased it in the last over, 19.1 overs. But D lead was wonderful to watch. 50 runs, he got a half century of 45. The wicketkeeper batter, 26 years of age, very promising, player from a Dutch point of view. And I was just saying about the recent tri-series with Bangladesh and Scotland. The Dutch women were flying in and out of the subcontinent to finish their exam. It was quite extraordinary. So that's what it's all about. The other cricketer, Caroline D. Lange, I said about her, she's a doctor by profession. She's a neurosurgeon, I believe. And she skipped it. And she's continuing on with their orange... to represent the country. So cricket is fast catching all across the country. I think BCCI is doing a great job, no doubt on that. And I feel, I keep saying in many of my matches that I come across, that T20 is a beautiful marketing tool and for lesser known countries to endorse the game. And it is the first step to climb when you go to the next set of games, the 50-50 and test matches.
1: विश्वनाथ इस टूर्नामेंट में जो कि ये दसवां संस्करण है सर्वाधिक बार ऐसे छः बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में छः बार कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 विश्व कप में चैंपियन रही है जबकि इंग्लैंड ने 2009 में जो कि इसका पहला संस्करण था उस समय इंग्लैंड ने इसे जीता था और वेस्ट इंडीज 2016 और न्यूजीलैंड जो कि पिछले साल दो साल पहले 24 में न्यूजीलैंड तो वर्तमान में न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है और अब देखना है कि नए ओवर के साथ सिल्वर सीजर्स एक बार फिर से आ रहे हैं दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज गुगली भी डालते हैं उनकी गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी एक कदम पीछे हटी और गेंद को मिड विकेट की तरफ धीरे से टर्न किया था कलाइयों के सहारे से बहुत तेजी के साथ नहीं गई थी गेंद एक रन और स्मृति मन ने ले लिया 53 रन उनका स्कोर 39 गेंदों पर भारत का स्कोर इस समय 138 रन एक विकेट के नुकसान पर 14 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था उस समय रन रेट यानी रन औसत था 9.74 तो T20 विश्व कप में आज ये दोनों ही टीमें अपना दूसरा मैच खेल रही है शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद मिड विकेट की तरफ ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ लेकिन फील्डर वहां पर खड़ी थी उन्होंने गेंद को फील्ड किया थ्रो किया विकेट कीपर के पास विकेट कीपर जो कि कप्तान ही है बबेट डी लीट नीदरलैंड्स के कप्तान है जिन्होंने आज टॉस जीतने के बाद पहली बार फील्डिंग करने का निर्णय लिया था हालांकि बांग्लादेश के विरुद्ध ये टीम हार चुकी है और भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को पराजित किया था दूसरे मैच में सामना कर रही है नीदरलैंड्स का इस बीच एक गेंद फ्लाइट किया था इसे ड्राइव किया बहुत तेजी के साथ चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर
2: ये लगा आभा का चौका
1: स्मृति का स्कोर इस समय हो गया 57 रन और 143 रन भारत का स्कोर, एक विकेट।

0: Lange, and India lose the second wicket. Both the openers are gone. It's 2 for 162 from 16 overs. I'm sure every Dutch girl out of the centre, they all come to a huddle and hugging each other. And it was very well taken indeed at mid-off, and celebrations in the Dutch camp. They know the importance of the wicket. De Lange is absolutely delighted. And so Mandana is gone finally for 74. Quatme Zwilling was the second catch, isn't it, for Zwilling, isn't it? And off the bowling of De Lange, and India are two down after 16 overs.
1: भारत को एक झटका लगा है, दूसरा विकेट भारत का यहाँ पर गिरा है. स्मृति मंधाना जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, मंधाना ने 74 रन का बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जा सकता है. हालांकि उम्मीद ये थी कि वो एक बड़ा स्कोर आज करेंगी, और अपनी पहले की पारी में जितने भी शतक लगाए हैं उनमें एक शतक की वृद्धि करेंगी. लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी परिदृश्य बदल जाता है. पलक झपकने के साथ ही कई नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं और पुराने ध्वस्त हो जाते हैं. अनिश्चितताओं के आंगन में ये खेली. गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन देखना है गेंद बैट से लगी है नहीं, और ये आउट दे दिया उन्होंने. गेंद उनके बल्ले के कहीं बाहरी किनारे से छूते हुए विकेट कीपर के पास गई थी, और भारत को ये एक झटका. जेमिमा रॉड्रिक्स 12 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन के स्कोर पर विकेट के पीछे पकड़ी गई, कैच आउट, आउट हुए. दूसरा विकेट भारत का 162 रन के स्कोर पर, और जिस तरह से गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी, स्वीप करना चाह रही थी, गेंद उनके ग्लव्स के पास से लगी, और विकेट कीपर जो कि कप्तान भी हैं बबेट डी लीड, उन्होंने लुढ़कते हुए एक शानदार कैच लिया, और उछलते हुए गेंदबाज ने भी अपने आप अपनी खुशी का को जाहिर किया यहां पर. और भारत का स्कोर इस समय 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जेमिमा रॉड्रिक्स ने दो चौके इस पारी में लगाए थे.
0: You look at the celebrations of the Dutch girls, amazing, isn't it? They are celebrating each and every moment of this game. They're really enjoying this World Cup as a team together. And whenever they get a wicket, irrespective of the score, I think the celebration has been wonderful to watch, and they are taking this game to a different level when they go back to Netherlands a couple of weeks from now. I'm sure there'll be a lot of learnings, and this experience is going to be very handy for them, for the future generation within Netherlands, to take the game and endorse T20 cricket very seriously. And their celebrations are wonderful to watch.
1: बिल्कुल, इस समय मंधाना और शैफाली वर्मा रॉड्रिक्स तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. स्मृति मंधाना ने 74 रन बनाए, शैफाली वर्मा ने 51 रन बनाए, और रॉड्रिक्स ने 23 रन बनाए. इस बीच गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट रीजन में, लेकिन एक रन ही मिलेगा. यस्तिका आई है नए बल्लेबाज के रूप में, एक रन के साथ अपना खाता खोला, और भारत का स्कोर 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. जिस तरह से आज भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए एक मजबूत आधार यहां पर रखा था, लेकिन उसके बाद तीन विकेट भारत के गिरे, और भारत का स्कोर बहुत मजबूत है इस समय 163 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और रॉड्रिक्स गेंद को स्वीप करना चाह रही थी ऑन साइड में, लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले के नज़दीक से निकलते हुए ग्लव से टकराई, और विकेट के पीछे बबेट ने उनको कैच किया. इस बीच ये अगली गेंद थी राजकीय, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑफसाइड में, और पीछे खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया. कैलिस खड़ी थी वहां पर, स्टीर कैलिस, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर. रिचा खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर, और यस्तिका खेल रही हैं एक रन के स्कोर पर. तो इस समय भारत को और रनों की आवश्यकता है, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही बल्लेबाज कुछ और रन जुटाएंगे. इस बीच ओवर पिच गेंद के देरी से फ्लिक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड करती सीजर्स गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक रन और यस्तिका ने लेते हुए अपना स्कोर कर लिया. दो रन दो गेंदों का सामना किया उन्होंने, दो रन बनाए. 165 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इस समय चल रहा है.
0: एक
1: बार फिर से वेंडर रेड वापस गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेकिन इस बार दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से।
0: इट्स माय कर्स।
1: जैसे ही आपने तारीफ की, उन्होंने एक वाइड गेंद डालते हुए बताया है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण अभी भी उनके पास में नहीं है। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर ऋचा खेल रही हैं। ऋचा घोष विकेट कीपर हैं भारतीय टीम की, एक रन के स्कोर पर, और यस्तिका खेल रही हैं दो रन के स्कोर पर। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को लेकिन बहुत ऊपर उठी है, देखना इसके नीचे फील्डर कैच कर पाते हैं, यहीं ड्रॉप कर दिया, ये गेंद छोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौलकबीर वहां पर खड़ी थी, उनको लगभग गेंद उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन यस्तिका की किस्मत अच्छी रही कि गेंद एक आसान कैच छूट गया डच खिलाड़ियों के हाथ से। काफ़ी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुआ था। उन्होंने देखा कि मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर आगे आ रही हैं, लेकिन जब देखा कि वो नहीं आ रही हैं तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने गेंद को हाथ में ले लिया था, लेकिन छिटक कर कैच चला गया। इस तरह के कैच बहुत महंगे साबित होते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को धीरे से डीप स्क्वायर लेंग की तरफ से सीजर्स के पास खेल दिया, एक रन और अपने खाते में जोड़ते हुए यस्तिका का स्कोर हो गया 3 रन और ऋचा घोष खेल रही हैं 2 रन के स्कोर पर इस ओवर की समाप्ति पर।
0: Well, the last over, it was not really a catch that was dropped. They also missed the run out. In fact, Richa was not running to the other end. She thought she's going to be out for sure, and it was a very easy chance that was spilled at cover area. I tell you, that was basic stuff. That was kid stuff indeed, and that should have been catchable at any standard. And unfortunately, she dropped it. It all happens in any form of cricket at any level, but. They probably would have got back to basics in trying to run the batter at the other side. They missed both of them. It's a bit of an inexperience on the part of Netherlands side. But nevertheless, India in a very strong position. But I'm very impressed with Van der Waart come back. She had a horrendous first over. Dean Lange, she comes to in balls and will be stumped easily. Easily stumped indeed. It's Yastika, she's gone. Again, a lot of celebration in the Dutch camp. Lange gets her first wicket. She got 2 in the first game against Bangladesh. In India, 168 for 4. And wickets have started to fall at very, very frequent intervals indeed. Nicely tossed table. And that one spinned with the arm. And was an easy stumping for the captain, D. Lee, to complete it. And that's got the batter standard by a mile. So, celebration all across. I could see the smile coming from everyone in the Dutch team. They're all enjoying every moment of this World Cup. They're enjoying every wicket of this. So, it's Yastika Badia, stumped by Lee, and off the mailing of D. Lange. And I won't say India in a spot of border with the fourth wicket going down, but I think, you know, the exit of Mandana, the flow of runs have been controlled to a larger extent. We haven't seen, the boundaries and the sixes getting in. So we'll just give you the bowling scorecard in a while from now. We're just getting it from a scorer. But the captain is in. Lange bowled short. And that's thrashed off the back. We're down towards deep extra cover. Oh, it's a nasty bounce for the fielder patrolling the boundary. I think the ball hit one of those playing turf indeed and bounced on to her. And the captain is over the mark. Harmanpreet Kaur, the 50-50 winning World Cup last year. And I tell you, she's really led the team by an example. There's a lot of discipline in the side. And she's been well respected within the side as a leader. And I think she's done a great job for the team. Lange, D. Lange. She's in the last of bowls. This is hit high, straight down the ground. One go for 5, I presume. No, it's gone for 4 indeed. And a tremendous hit indeed by Richa Ghosh. That's a penalty you play when you drop her because she smashes that one. In fact, it's gone for 6, actually. And we couldn't pick it up very cleanly here. It's gone for 6. Ye laga, abha ka chakka. It just managed to cross the boundary ropes over there. Flat indeed from Richa Ghosh. And boy, she's a very powerful lady. And when she hits them a long way. Pretty strong wrist indeed. Here's the next ball. Lange ball short wide. She has to wait and reach for that. And a good diving stop at backward square on the offside. And that takes Richa up to 9 from 4 deliveries. India 176 for 4. The 2.2 overs remaining in this game. they still managed to bowl with the least of penalty, I presume, because they had plenty of wides in this game. So 15 wides in this game. And brings the captain on track, Harmanpreet Kaur. 178 matches, 4.

0: 2,100 in total runs. Amazing career indeed. First ball, she goes back, rocks off the backwood, but unfortunately it goes straight to Heath Seegers at extra cover. No run. She's on 1 from 2. Look at the run rate, 9.87, going steady. With the next match coming up after a few hours from now, Pakistan and South Africa. Hermanpreet Kaur off the backwood cuts this one. They're running tough single indeed. There was a chance of running out of this non-strikers end. They still complete the run. And at the end of 18 hours, it's 4 for 177.
1: 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 177 रन और भारत की तरफ से जो विकेट्स गिरे हैं, पहला विकेट गिरा था 115 रन के स्कोर पर, शेफाली वर्मा आउट हुई थी। दूसरा विकेट 162 के स्कोर पर स्मृति मंधाना आउट हुई। तीसरा विकेट 162 के स्कोर पर ही गिरा, जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई थी। और उसके बाद चौथा विकेट यास्तिका भाटिया के रूप में गिरा था। उस समय स्कोर था 17.168 रन स्कोर था। और इस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज, वहां पर रनों की संख्या तो बढ़ाई भारत ने, लेकिन विकेट भी गिरे हैं। 18 ओवर के बाद 9.83 के औसत से रन जुटाए हैं भारतीय टीम ने। इस समय भारत का स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये 19वां ओवर, यानी इसके बाद भी, इस ओवर के बाद एक ओवर और खेला जाएगा। इस बीच डी राड गेंद को शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, धीरे से कलाइयों के सहारे से स्क्वायर लेग की तरफ खेला हरमनप्रीत ने और अपने खाते में एक रन और जोड़ दिया। हरमनप्रीत का स्कोर इस समय 3 रन। ऋचा घोष अब आ रही हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक प्लेयर कही जाती हैं और कई मौकों पर भारत के लिए उन्होंने अंतिम क्षण में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, मुझे याद है गत वर्ष जब विशाखापट्टनम में विश्वनाथ और मैं एक दिनी विश्व कप में कमेंट्री कर रहे थे, ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बहुत ही शानदार स्कोर किया था। इस समय ऋचा घोष तैयार हैं 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर 178 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह अगली गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, गेंद बिल्कुल हवा में जा रही है और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा हम बता ही रहे थे कि ऋचा घोष बहुत ही आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करती हैं। ऋचा घोष ने बिल्कुल स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और पूरी ताकत के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाकर गिरी थी। एक और शानदार छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और भारत का स्कोर 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ऋचा घोष फिर से तैयार हो रही हैं, 5 गेंदें उन्होंने मात्र खेली हैं और 15 रन बना लिए हैं। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल किया है उसे, देखना है फील्डर नीचे नहीं, लेकिन बहुत पीछे थी फील्डर और पहले टप्पे के साथ फील्डर के हाथ में आया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। एक रन और ऋचा घोष ने अपने खाते में जोड़ लिया, 16 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इस समय 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। ऋचा का स्कोर हो गया 16 रन, 6 गेंदें मात्र खेली हैं और वेन डी राट की ये इस ओवर में 8 रन अब तक ले चुके हैं, 3 गेंदें अभी भी शेष हैं। हरमनप्रीत इस बार तैयार हैं अगली गेंद का सामना, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया उसे और गेंद अब जाके फील्डर के हाथ में आई, लेकिन तब तक हरमन और ऋचा ने 22 गज के इस घेरे की पट्टी को दौड़ते हुए पूरी किया। हरमनप्रीत का स्कोर हो गया 4 रन, 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। ऋचा अब 16 रन के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं अगली गेंद का। भारत और नीदरलैंड्स के बीच में T20 विश्व कप का यह मैच, टॉस नीदरलैंड्स ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राट की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री की तरफ, उसे गेंद को टैक किया था और 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 190 रन भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर।
0: Well, the last shot was just fantastic to watch from Hermanpreet Kaur. Just bounced inside the fence for 4, one bounce. And the fielder at the boundary, she was not at the edge of the boundary rope. She was just, yeah, what I would say, a couple of yards in front, and she was never in control of that. That was catchable by all means. 190 for 4, one ball to go in the 19th over. And well, India should get past 200. I think that's what everyone was looking at. Right in the last of bowls, Fuller, and it's beautifully bowled. It was a dot bowled in the over. Fuller, Yorkerland ball, and Richie was trying to make some space and crush it and missed it. And a dot ball. 4 for 190 from 19. Exactly 10 is the scoring rate from India's point of view. If you just switched on your radio sets, you're drawing the car. It's one of the best form of entertainment. And India was sent in by Netherlands today. The second of the matches they're playing this World Cup. They're 190 from 19 overs. And well set for a 200. I think we're not seeing a 200 score in this World Cup so far. And well, we're not seeing much surprises from the Dutch women. But I tell you, they've taken this game at a different level. And they're going to be a big inspiration for the future generation within Netherlands to come up. And the first game they played against Bangladesh, they played well. First ball, here is now, Zwilling Bowles gets an edge. It's going down towards deep. Third man, and run away for four.
2: Ye laga, abha ka choka.
0: Not a great start to the last ball, to the last over. It was a thick outside edge and it flies past the fielder who is inside the circle within the 30 yards and wide offer for four. So that's what India needed. 194, five legal deliveries remaining, and good entertainment indeed provided by the Indian batters. Richa goes in 20 from 8, and Harmanpreet Singh on 8. Next ball is wide down the Lakshya. Well taken by the keeper. Beautifully done indeed. And a dot, and it's an extra delivery. Lots of wides in this game. And Zwilling, she's bowling the last over. No wicket for 27 from 3.1 overs. Bowling analysis. And well, I'm sure this is a match that I'm sure is going to boost the confidence of the Indian batters, particularly the bowlers, when they come and have a go at the Dutch women. This next ball short, and she hits it high, and well caught, all dropped again. She almost caught it, and I thought she was in control of that, and in the end she dropped it. I'll tell you, frustration for the Dutch team. It was, in fact, Richa, she dropped it at mid-off, and that was coming at a comfortable height. A slower ball indeed. It was a bit of an off-spinning delivery. And Harmanpreet Kaur was never in control of that and headed straight to the fielder at mid-off, and she dropped it. It was a kind of a lolly pop chance. Next ball is driven hard. See, this time she misses the field, misses the ball. It's beaten her. It's beaten at mid-off, and it's gone down towards the deep mid-off fence for four.
3: Agashivani. ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലീഡ്സ് ഹെഡിംഗ്ലിയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്സും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 34 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കേൾക്കാം.
4: ആകാശവാണി, നമസ്കാരം. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് അമൃത വൈശാഖ്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു 5 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി നാളെ മധ്യപ്രദേശിലെത്തും. ഇൻഡോറിൽ ബ്രഹ്മകുമാരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ശ്രീമതി മുർമു പങ്കെടുക്കും. G7 ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം, പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇരുവരും ചർച്ച നടത്തും. ജർമ്മൻ ചാൻസലർ, യൂറോപ്യൻ കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ്, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി. ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ 1930 പ്രവർത്തനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും ബഹുഭാഷാ പിന്തുണയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. PM വികസിത് ഭാരത് റോസ്കർ യോജന പ്രകാരം 2400 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഇൻസെന്റീവുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിതരണം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ വർഷം August 1 ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്കായി 99,446 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പരിപാടികൾ നടക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിനുള്ള വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ ഈ മാസം 21 നടക്കുന്ന യോഗാ ദിനാചരണ പരിപാടികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകും. പാകിസ്ഥാനിലെ ISI ഭീകരൻ ഷഹ്സാദ് ഭട്ടിയുമായി ബന്ധമുള്ള 8-അംഗ ഭീകരവാദ സംഘത്തിലെ 5 പ്രതികളെ കൂടി ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഇതേ സംഘത്തിലെ 3 അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. 9 ജില്ലകളിൽ ഇന്നും 7 ജില്ലകളിൽ നാളെയും

0: ചലച്ചിത്രഗാനം സമാപിച്ചു. ഇനി 8:45 സമാചാര സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ
1: ആകാശവാണി സമാചാർ സന്ധ്യ വിശാൽ ശർമ്മ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की. पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई. रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी. मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की. और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया.
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं.
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की. इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की. श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा

0: की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्रा।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence, and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
7: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
6: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 Summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany Intergovernmental Consultations, IGC, scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
8: The two-day visit of Prime Minister Narendra Modi to the beautiful French city of Evian has been highly significant. During the visit, the Prime Minister participated in various G7 outreach sessions where India was invited as a partner country. This marked Prime Minister's 7th consecutive participation in the G7 summit. India's regular presence clearly demonstrates that the nation has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. During the outreach sessions, Mr. Modi strongly presented the voice of the Global South before the crucial forum. In yesterday's session, he underscored the importance of trust in building international partnerships in an increasingly interconnected world, highlighting that India has always followed a humanity-first approach. In today's session, the Prime Minister underlined the critical need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developed countries. Mr. Modi also emphasized that tangible growth leads to the true inclusion and well-being of people, showcasing India's own growth story underpinned by the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Biswas and Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
6: India and France have reaffirmed their commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at the inauguration of the India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and French Minister for Artificial Intelligence and Digital Affairs Anne Le Hennef highlighted the growing strategic partnership between the two countries. More from our correspondent.
9: Addressing innovators and startups, Piyush Goyal said the India-France partnership has been strengthened further through the India-France Year of Innovation 2026 announced by Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. He said India offers key advantages for the AI era, including a young population, a large pool of STEM graduates, strong digital infrastructure and democratic governance. The minister underlined India's vision of human-centric artificial intelligence through the concept of Manav, emphasizing ethical, accountable, inclusive and trustworthy AI. He said India is prepared to become a global hub for AI talent, data centers, and advanced technology. French Minister Anne Le Hennef described India as a global innovation powerhouse and welcomed its role as the AI country partner at Viva Tech 2026. This is Mahesh Sopade, Akashwani News, Paris, France.
6: The India Pavilion is one of the largest national pavilions at Viva Tech 2026 and showcases the country's growing startup and innovation ecosystem. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Indian Railways has approved a series of infrastructure projects worth over 1,200 crore rupees aimed at enhancing rail capacity, improving freight movement, strengthening safety systems and upgrading urban transport infrastructure across Gujarat, Maharashtra, West Bengal and Madhya Pradesh. The projects include the doubling of a key railway section in Gujarat, construction of a new freight cord line in Maharashtra, modernization of signalling systems on Eastern Railway, and rebuilding of a major road overbridge in Indore. Together, the initiatives are expected to improve operational efficiency, decongest critical rail corridors, enhance passenger convenience, and support economic growth. In a boost to rail connectivity in the Kutch region, the doubling of the 49-kilometre Adipur-Bhuj section on Western Railway has been approved at an estimated cost of 493 crore rupees. Indian Railways has also approved the construction of the 3.7-kilometre Somtene-Chikli cord line on Central Railway at a cost of 172 crore rupees in Maharashtra. The new line will establish a direct rail connection between the Karjat and Roha routes, allowing freight trains to bypass the heavily congested Panvel junction. In a major modernization initiative, the Indian Railways has sanctioned a 405 crore rupees signalling upgradation project on Eastern Railway. To improve urban mobility and railroad connectivity in Madhya Pradesh, Railways has approved the reconstruction of the Shastriya Road overbridge in Indore Yard at a cost of 139 crore rupees. Union Minister Ashwini Vaishnaw today announced a major expansion of Pune Railway Station with an investment of around 600 crore rupees. The minister was speaking after flagging off the Pune Sai Nagar Shirdi Express at Pune Railway Station and inaugurating and laying the foundation stones for various railway development projects. In another function, inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune, Union Electronics and Information Technology Minister Vaishnaw said, India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics.
10: Today we have electronics manufacturing industry worth 13 lakh crore rupees in our country. Electronics export was considered unthinkable. Last year, 2025, electronics as an export category became third largest export category in the country. But now we must take the target. Second largest exported category banna hai.
6: India has undergone a remarkable transformation, driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government has carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, the women and the youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
0: Over the past 12 years, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee, shared his experience.
11: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table walks and displays which look very divine.
0: In Ujjain, Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project project was dedicated to the nation in October 2022. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals, and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the temple with River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. Talking to Akashvani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the corridor is providing

0: with Deepthi Sharma. Sharma in the second over, close to some balls, and she stops. I think she lost the footing over there. And then the umpire says, it clears it as a dead ball. She wants a shuffle in the field now. It's been a bit of a blue sky, I could see all around the Leeds ground, and which means that we don't want to see a threat of rain. It's one of those ground where, when you play most of the matches in England in particular, the daylight pattern could change. Deepthi bowls. She's down the track, hoists it high in the air, over mid on, one bounce, the fielder, Shefali. And not more than that. We didn't get a six in the last game that the Netherlands played against Bangladesh. So they're not finding those long boundaries. As a matter of fact, 2 for 61 in the 10th over. They need 149 from 64. It's very demanding now, as a matter of fact. Deepthi bowls slower and plays with an angle face of the bat. Beautifully played. There was a bit of a deft touch in that. It's going down towards the deep third man area. Smithy Mandana, she's after it. And she chases, fields, picks it up, returns. And a couple of runs for the Netherlands team. They go up to 63 for 2 midway of the 10th over. And 147 from 63. That's a massive ask. Callis, she's an 8 from 7. And D lead, the captain, 16 from 14. And to turn it around from here is next to impossible, as a matter of fact. There's an amazing stadium, the Leeds, and it's got its own stories, history. Plenty of games played. Next ball short, she cuts, beautiful short indeed. She made some room and played it beautifully, square of the wicket, one of the good shots of the evening. It's gone for 4. Ye laga, abha ka choka. There was so much of class in the shot from D-Laid. She rocked onto the back foot and played it for square. There was a bit of turn and comfortable bounce to play the shot of the back foot. It's gone for 4. That's a third boundary. I could see her. She's so good with her footwork. She's nimble-footed. And she's very fast down the track or playing off the back foot. 2 for 67. India 94 at the time. Next ball is driven around the wickets as Deepthi started bowling around the wickets, in fact, rather. Down to long gone. It's 2 for 68 from 9.5 overs. And still, I would say it's a decent score when you put up 65, 70-odd runs inside the 10 overs. And here's Deepthi, the last time, comes and throws this one nicely, and the batter played from the crease without any foot movement, and it goes through to the keeper. A dot ball to end the over. 10 overs gone, 2 for 68.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय कश्मकश जारी है गेंद और बल्ले के बीच में और देखना है कि नीदरलैंड्स की ये पारी कहां तक जा पाती है. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है. इस समय दीप्ति शर्मा बहुत ही स्टार गेंदबाज हैं भारत की तरफ से. पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी सबको चकित कर दिया था. भारत ने 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए थे. 10 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, यानी नीदरलैंड्स अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है, लेकिन उनका रन का जो खाता है अभी 68 रन पे अटका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर. जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे थे, हीथर सीजर्स 2 रन पहले आउट हुई थी, उसके बाद मॉल्केन बोर आउट हुई थी. सीजर्स ने 21 और मॉल्केन बोर ने 15 रन बनाए थे. इस समय स्टीव कैलिस मैदान में खेल रही हैं. क्रांति गौड़ को लाया गया है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज. शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गई और गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया 4 रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: कीर्ति गौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उनकी और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी. बल्लेबाज ने मौका तोड़ा और गेंद को धीरे से कट कर दिया था डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए. तो इस समय क्रांति गौड़ से बातचीत कर रही हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर. उनको समझा रही हैं कि किस तरह से उनको अपनी गेंदबाजी की दिशा बनाए रखनी है. और दोनों बैटर्स कहना होगा बहुत अच्छा खेल इस समय दिखा रहे हैं. लीड खेल रही हैं 16 रन पर और कैलिश खेल रही हैं 17 पर सामना करने के लिए अगली गेंद का. इस गेंद को धीरे से पुश किया था मिड विकेट की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जाता एक रन और लीड ने अपने खाते में जोड़ा. उनका स्कोर कैलिश ने अपने खाते में जोड़ा 18 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. लीड का स्कोर इस समय है 16 रन 15 गेंदों का.

0: जिन्होंने सामना किया है। बैबेट डी लीड कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर की को आकर बहुत देर तक जमने के लिए गेंदों को देखना नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद को धीरे से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ड्राइव कट किया है और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर थी गेंद को धीरे से उन्होंने हवा में थी, हालांकि फील्डर जो खड़ी थी शॉर्ट फाइन लेग पर उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, पुश भर किया था गेंद को अपने बल्ले से और फील्डर के हाथ में तो नहीं आई, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर चली गई। लीड इसके साथ ही 20 रन पे जा पहुंची, 77 रन दो विकेट के नुकसान पर। इसने अच्छी गेंद थी, इस बार एक कदम आगे बढ़ी, धीरे से गेंद को पैड के साथ खेली थी, लेकिन और इसके साथ ही रन लेने का कोई मौका वहां पर लीड को नहीं मिला। बबेट डी लीड कप्तान हैं और इससे पहले जो बांग्लादेश के विरुद्ध मैच खेला था इस T20 विश्व कप में, अपना पहला मैच खेला था, वहां पर 50 रन से अधिक उन्होंने बनाए थे, एक अर्धशतक बनाकर टीम को एक सांत्वना दी थी। हालांकि बहुत कम स्कोर पर उनकी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी थी, ऐसे मौके पर डी लीड ने आकर अपनी पारी को संवारा था। इस बीच एक बार फिर से तैयार, 77 रन दो विकेट के नुकसान पर अगली गेंद थी। लेग ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकते हुए थी विकेट कीपर घोष की ग्लव्स में जाके पहुंची। बबेट डी लीड बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही थी बांग्लादेश के विरुद्ध एजबेस्टन में, उन्होंने बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 45 बॉल में 50 रन स्कोर किया था। लीड फिर से तैयार हो रही हैं, क्रांति गौड़ के शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, गेंद को पुल करना चाहती थी, पूरी तरह से चूकी और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई, और देखना है अंपायर बात कर रही हैं वहां पर कि क्या कहीं गेंद बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एक निर्धारित ऊंचाई से ऊपर निकली है, लेकिन 77 रन दो विकेट के नुकसान पर इस ओवर की समाप्ति पर।
2: Well, that was a good bouncer. It was a bouncer heading on straight towards her head, and she missed it completely. She had a look at the umpire, the square leg, and there was no signal from the square leg umpire, which means it was a genuine delivery. So, see, the bounce has been a bit effective in this World Cup, I've seen, because some of the tracks in England also have a bit of bounce. There's always something there for fast and swing bowlers. 133 more needed from 54 deliveries, which is 9 overs, and the game is just getting beyond the reach. Shefali bowls the first ball, and it's placed backward a square on the offside, straight to Jemima, and no addition to the total. So only 77 for 2. I missed some opportunity over there for finding boundaries, and this World Cup, India probably will be one of the contenders. Shefali close to some bowls. Oh, she's bowled her beautifully bowled. She missed it completely, and Callis has gone bowled, and that was beautifully bowled, and I think it held its line a bit as the plier was the batter was waiting for the spin, and that didn't happen. It went. Well, it slided on and it broke the timbers. An amazing delivery indeed, by all means. It drifted away, I can tell you that. And then it held its line, and the batter played the wrong line completely, and the stumps are disturbed. So which means the third wicket is down for Netherlands, 77 for 3 in the 12th over. And Sturry Callis walks back 18 from 13 with the help of 3 boundaries. And probably these are the opportunities that I think batters should not lose, as a matter of fact. This is a beautiful platform to find some form and get ready for the rest of the other games. So qualifying for the semi-finals is very challenging now, because you're in a pretty strong group. And when you play teams like Australia or India or South Africa, as a matter of fact, it won't be that easy indeed. So, Netherlands have lost their third wicket. Callis has gone bowled by Shefali Verma. A beautiful delivery, which actually drifted away, and it held its line and got the batter playing the wrong line. 77 for 3. And it's Richki. She's the new batter in, and she's going to play Shefali Verma. She's a very tricky customer. Quicker one, flicked away on the onside, and she's off the mark. Richki of the first ball. And that brings the captain on strike, 20 from 19. And she's played beautifully in this game so far. Got a half century in the last game against Bangladesh. And Shefali all of a sudden has got the habit of breaking partnership indeed. And very effective and fast becoming a genuine all-rounder. Next ball. She's back again. Pulls it high over deep into wicket. One go for four has been patrolled by Renuka. And in comes a throw. Rather, she was the fielder. And restricts to just a single. It's 79 for three. Two more balls remaining in the 12th over. As Netherlands need 131 from 50 deliveries. And the game is just getting beyond the reach. Rich Keane strike. Takes card from the umpire. And she goes for the reverse sweep. We're not seeing the reverse sweep in the whole game. This is going down towards the third man area. And that's gone away for four.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: A smart bit of cricket indeed. And a lot of scoops been played. The sweep's been played. And the first time I'm seeing a reverse sweep. And played to effect. And it fetches her four more runs. And she's up to five. And a welcome boundary here for the Netherlands. And, well, the cricket time is a very funny game. She's on 5 from 2, 83 for 3 in the 12th over, 127 needed. Shuffle in the field from Harmanpreet Kaur. No reinforcement on the offside within the 30-yard circle. Four inside the circle, next ball. She's up and defending, back to the bowler. A very proper defensive push back to the bowler. Brings the over to an end. 12 over is gone. It's 3 down for 83.
0: 12 ओवर के समाप्ति पर 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है नीदरलैंड्स की टीम लेकिन जैसे जैसे ओवर्स बीतते जा रहे हैं मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है और नीदरलैंड्स से दूर जाता जा रहा है मात्र 8 ओवर का खेल अब शेष रहा है और 15 से अधिक रन अगर प्रति ओवर बनाने की क्षमता है नीदरलैंड्स की तब तो कुछ कहा जा सकता है लेकिन अगर आज की परिस्थिति में अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो नीदरलैंड्स की टीम अब थोड़ी सी परेशानी में 6.92 की उनकी गति है जबकि उनको चाहिए 15.88 इस बीच क्रांति की पहली गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का घेर की पट्टी को पार किया एक रन उनके खाते में जुड़ा है और इसके साथ ही स्कोर हो गया 83 रन इस बीच 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस बीच एक जानकारी हम और आपको दे सके हैं कि दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच में लखनऊ में खेला जाएगा इस बीच ये गेंद हवा में ऊपर है देखना है फील्डर्स के नीचे है या नहीं लेकिन बहुत ही थोड़े से अंतराल से बच गई वो बाल बाल बची वहां पर स्मृति खड़ी थी गेंद की तरफ लपकी थी लेकिन गेंद उनके हाथ पे नहीं आई डी लीड 21 रन पर सामना करेंगी जबकि रिस्क क्या स्कोर हो गया 6 रन बगैर किसी नुकसान के 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर के खेल पर और 125 रन अभी भी चाहिए नीदरलैंड्स को इस मैच में पार पाने के लिए 46 बॉल में गेंदों पर बहुत मुश्किल काम शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी पुल करना चाहती थी हालांकि पीछे विकेट कीपर अपील की मुद्रा में है लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया एक अतिरिक्त रन और इस ओवर में दूसरा अतिरिक्त रन एक लेग बाई से मिला था पहली गेंद पर उसके बाद में एक रन बल्लेबाजी में मिला था और उसके बाद में ये वाइड गेंद करार दी गई 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर कप्तान बबेट डी लीट इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ हैं रिस्क इस बीच एक गेंद को पुश किया था लीड ने और एक रन अपने खाते में जोड़ा 22 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया भारत ने आज अफगानिस्तान के विरुद्ध सेकेंड जो मैच खेला था 170 रन से जीता है भारत ने और ये सूचना हमारी श्रोताओं को दी जा रही है कि आज जो मैच खेला गया था लखनऊ में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था और उसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रन के बड़े अंतर से अफगानिस्तान को पराजित किया है 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच लीड्स के मैं खेला जा रहा T20 विश्व कप का ये मैच। एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से स्क्वायरिस थर्ड मैन की तरफ खेला, एक रन और जोड़ा है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है और अगर उनको प्रति ओवर 16.50 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है नीदरलैंड्स के लिए। और इस बीच क्रांति की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट किया था, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन अब जाकर राधा यादव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया विकेट के पर एंड में। लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कि वो रन जुटा लेते। दो रन और जुड़े हैं नीदरलैंड के खाते में। जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, छिटकी थी वहां पर फील्डर के हाथ से, गली में खड़ी फील्डर के हाथ से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाती तो ये कैच हो सकता था। इस बीच एक बार फिर से क्रांति की गेंद, अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन बैट और बल्ले से उलझी गेंद बहुत तेजी के साथ रन चुराते हुए डी लीड्स दौड़ी, वहां पर उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया। इसके साथ ही 25 रन 13 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर।
2: नो इंडियन बॉलर्स हैव बीन टॉस्ड इन दिस गेम एंड And a lot of cricket going around the world. India playing Afghanistan, and they won the game today. The second ODI by 170 runs. Good centuries from the captain, and of course the wicketkeeper. They all hammering hundreds, and it was a comprehensive win for India. 402 when they batted first. Shubman Gill scored 154, and Ishan Kishan scored 124, and they won comprehensively. 170 runs is the margin of victory. So six bowlers been used and one is indisposed, which is Sri Lanka. Otherwise, Kranti Grant has bowled a 4 overs for 26. Nandini back in action now. 2 overs, 1 for 16 bowls. She goes for the scoop, does well, beats the short final leg fielder. This will race away now. It probably should be stopped a few yards inside the fence by Sri Charani. Couple of runs here. The scoop has come into effect in this game well from Netherlands' point of view. It's one area where there's a lot of risk involved, but as a matter of fact, it fetches you more runs and disturbs the rhythm of the bowlers. And that takes the lead. She's on 27 from 25, fast catching up with the half century scored last Sunday against Bangladesh. Next ball, she daps the ball in down towards long on, and they've all settled for a single. Lot more than that. Not sure why. You know, Nandini's running after that because she's well aware of the fact there is a fielder patrolling the long on boundary, and I probably can appreciate the commitment over there, but that's absolutely unnecessary. 3 for 95 in the 14th over, 115 more needed from 40 deliveries, which is beyond the reach of this Netherlands team. But I'm sure by the time these guys come and play in the next World Cup, you probably will see a reshaped young Netherlands team. Next ball is pushed back to the bowler and a shy back at the bowler. I think it's hit her somewhere, and a bit of a friendly gesture and acknowledgement from both sides, both by the batter and the bowler. And it's a dot ball in the end, 3 for 95. Richke, she's on 7 from 6, having played a nice little river sweep in the last over. And I think 2 on 9 for all means is a massive target to be chased and won. I felt maybe that they should have batted first. It would have been, you know, to their advantage as a matter of fact, and have some runs on the board and defend the total rather than chasing anything over 209. Nandini bowls, slower ball, and he gets an inside part of the bat. Again, a clash between the bowler and the batter, and they get an easy run indeed. It takes Richke up to 8 from 7 and D lead back on strike 28 from 26. 6.2 is still remaining after this. It's the formalities we're going through. And it's probably one of the most, you know, one-sided affair of this overall World Cup. I probably can tell you that. And mind you, Netherlands have to play Australia, South Africa and Pakistan. They probably will fancy the chances against Pakistan as a matter of fact, but it's two strong teams. They need to play again. Nandini bowls this time short. She can't say she's been stamped smartly. Brilliant bit of work from Richa Ghosh. The captain goes stumped beautifully.

0: And Nandini gets another wicket, isn't it? She's got a second wicket, and Netherlands now in deep trouble. They lose their key premier player. The captain gone, stumped smartly. She was coming down the track, and then she bowled it short intentionally, and she missed it completely, and an easy stumping for Richa Ghosh to complete. And that brings to an end the end of the captain daily. It's stumped by Ghosh and off the bowling of Nandini for a well-compiled 27. Probably she could have stayed in there to get a better personal landmark, and 28 from 27. She walks back but dejected, and she knows the importance of a wicket, and Netherlands sink further. 96 for 4, and well, it's been, you know, Goswami, a one-sided affair. You know, the moment they won the toss and preferred to bat first, to my surprise, they should have batted first, I feel, and put some score and defend the target. They did well against New Zealand. They did well against Netherlands in the first game. But this Indian side is pretty strong, both with bat and ball, and tons of experience behind them, and so much of cricket they play continuously and consistently. And there's some potential match winners in the side, the guys who can turn around quickly, and there's some players who can change the course of the game in few overs, someone like Richa Ghosh or Smriti Mandhana. She's such a wonderful player to watch, and a very gifted left-hander. It's been India's day so far. The men team have proven their mettle. They won the game against Afghanistan by 170 runs. And the women's team is not far away. That one is a 50-over match, and the one that we are doing is a 20-over game. And June has been a month flooded with variety of sports: tennis, football, variety of T20, 50-50, test matches going on. England are playing New Zealand today with 220 for 5. New Zealand some time back. No Stokes in that game. He's got his own problems beyond the playing hours. Unfortunately, it's Root leading England after a long gap, and he's playing his 167 test match. Would you believe he's playing 167 test match? The rest of the other England side all put together 114. But a wonderful cricketer. Fancy him to get past Tendulkar somewhere down the line. He's got 3 or 4 years of cricket left with his bat. So right now, back here in Leeds, India on the way. They're in complete command of this game, and Netherlands probably haven't batted badly, but they're learning, continue to learn as the game goes on, the months and years to come. And they're probably, at some point of time, in the next 10 years' time, they'll be a strong contender in the T20 format, as a matter of fact. So right now, new player is going to step into the centre, play briefly held up with the exit of the captain, who's been stumped smartly by Ghosh, and off the bowling of Nandini, and one casualty in the inside with Patil. The off spinner, you know, just bowled one ball, and she had a nasty fall. She slipped, and she suffered an ankle injury. Say, Overjik. She's the new batter in, and the batter at the other side is Richke, Netherlands. 96 for 4, one ball to go in the 15th over, and the target they're chasing now looks very unrealistic. 210. Nandini with the last ball of her third over, bowls fuller and lifted in the air, wide of Minon. It'll be cut off by Jemima Roderick. She does well to cover, to have to run 15 metres. Couple of runs here. And after 14 overs, Netherlands, a 4 for 98.
1: 14 ओवर की समाप्ति पर 98 रन पर 4 विकेट इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है, जो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं. हीथ सीजर्स, कॉट स्मृति मंधाना, बोल्ड कीर्ति शर्मा 21 रन, मेलकन बोर्ड, कॉट जेमिमा रॉड्रिक्स, बोल्ड दीप्ति शर्मा 15 रन, बबेट डेलीट, स्टंप ऋचा घोष, बोल्ड नंदी शर्मा 28 रन, और स्टीव कैलिस, जिनको सैफ अली ने बोल्ड किया था 18 रन के स्कोर पर. और इस समय 4 विकेट जो गेंदबाजी का सिलसिला है, नंदी शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए, सैफ अली वर्मा ने 3 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया है, और पाटिल जैसा कि इंजर्ड होकर चली गई थी, गेंद फेंकी थी, श्री चंडी ने 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं, और दीप्ति शर्मा ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की. तो इस समय नीदरलैंड जूझ रही है भारतीय आक्रमण के समक्ष. 14 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, डिसीजन को रिव्यू किया गया है, देखना है. अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है, और तीसरे अंपायर अब टीवी पर देखकर, टीवी अंपायर लॉरेन एगेनबेग टीवी अंपायर की भूमिका इस मैच में निभा रही हैं और डिसीजन जिस तरह से आपको हम निरंतर बता रहे हैं कि गेंद को स्वीप करना चाहा था और गेंद उनके बूट पे लगी है, देखना है गेंद बैठ के कहीं किसी किनारे भीतरी किनारे से तो नहीं लगी, यही देखना है। और अगर नहीं लगी तो फिर उसकी क्या दिशा रही है, क्या गेंद स्टंप्स को छूकर निकल रही है या स्टंप्स के पास से निकल रही है, इन्हीं सब बातों का एक चिंतन होता है और तीसरे अंपायर की तरफ से ये निर्णय किया जाता है। क्रिकेट में जब से रिव्यू सिस्टम आया है बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब बेहतरीन बल्लेबाज कई बार गलत तरीके से आउट दे दिए जाते थे लेकिन बाद में इस तरह की कंट्रोवर्सीज निकलती रहती थी, लेकिन फिलहाल देखना है कि अब जाके पूरी तरह से संतोष मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई है, लेकिन देखना है कि क्या निर्णय होता है। अंपायर ने अपना निर्णय दिया, आउट हो गए हैं बैटर और ये अंपायर की उंगली उठी। इसके साथ ही क्रिज की पारी यहीं पर समाप्त हुई और एक और करारा छक्का लगा है। रॉबिन रिस्क 8 रन पर आउट हुए हैं। LBW बोल्ड श्री चरणी, उन्होंने मात्र 3 डॉट गेंद बनाई, 1 रन उनके खाते में जुड़ा और इस तरह से दक्षिण नीदरलैंड्स को एक और करारा छटका लगा है। और देखा जाए तो एक तरफा मैच होता हुआ विश्वनाथ ही नजर आ रहा है कि किस तरह से पहले टॉस जीतने के बाद एक मौका मिला था कि वो बल्लेबाजी करती, लेकिन उन्होंने बेटर समझा, उचित समझा ये कि हम पहले गेंदबाजी करें। भारत ने 209 रन का स्कोर उनके समक्ष दिया है।
0: Well, at times I probably will say it's a match of the unequals, isn't it? One of the top-ranked team playing a team which is new entrant and a long way to go. Charney bowls and driven towards long off for a single. She's off the mark, Zwilling. She bowled well, indeed, and takes Netherlands up to 99 for 5.
1: ज्वेलिंग ने अपना खाता खोला है, एक रन लिया है, जिस तरह से पिछली गेंद पर आउट हुआ था अंपायर ने एक और आउट नहीं दिया लेकिन रिव्यू दिया और उस पर भारत को सफलता मिली। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय नीदरलैंड्स का स्कोर है। ओवर डिस्क इस समय 2 रन के स्कोर पर खेल रही हैं। ज्वेलिंग ने 1 रन बनाया है और अब 111 रन पीछे है अभी भी नीदरलैंड्स की टीम भारत के मुकाबले, जबकि 34 गेंदों का खेल शेष रहा है। बहुत ही मुश्किल, कोई चमत्कार ही हो तो अलग बात है। इस बीच ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, गुड लेंथ गेंद थी। एक बार फिर से श्री चरणी को सफलता मिली कि उन्होंने मौका नहीं दिया बैटर को रन लेने के लिए। ओवर डिस्क इस समय खेल रहे हैं 2 रन के स्कोर पर और एक बार फिर से श्री चंडी गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट, एक कदम आगे बढ़ी, ड्राइव करना चाहती सीधा लेकिन गेंद बन लेके बाहरी किनारे से लगते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: एक चौके से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लेकिन निश्चित रूप से ये मैच अब भारत की पकड़ पे मैं आ चुका है। श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी और अंपायर ने हालांकि उसको आउट नहीं दिया था लेकिन बाद में रिव्यू लेने पर उनको सफलता मिली। इस बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ और इससे पहले कि गेंद फील्ड की जाती थ्रो किया जाता 1 रन और उन्होंने अपने खाते में जोड़ा, हालांकि मिस फील्ड हुई। 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है और 1 गेंद अभी भी शेष है श्री चरणी के इस ओवर की। 14.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। नीदरलैंड्स के बल्ले से अभी तक 104 रन निकले हैं, 5 विकेट का नुकसान उनको हो चुका है, आधी टीम उनके आउट होकर पेविलियन लौट चुकी है और भारत के लिए ये एक आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी इस समय की जा रही है। गली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को धीरे से पुश किया स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता 1 रन और जोड़ लिया। 106 रन 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है नीदरलैंड्स का।
0: So the game has gone one-sided, isn't it? Last 5 is coming up and it's certainly out of reach now. The ask is around about 20 runs an over, so we haven't seen any of the best of the IPL games. And 209 in the play after 15 overs, in 105 for 5. So Dee Lange, she bowled well. She bowled 4 overs for 32.

0: And she was the best of the ball. She had 2 wickets in the game against Bangladesh too. She bowled 4 overs 2 for 27, isn't it? In that game. It's going to be Deepti Sharma to bowl her 3rd over. Flights this one, and it's lifted in the air, safe. It'll fall safe of the fielder, Mandana, at deep mid-wicket. In fact, it's not Mandana, I can tell you that. It's Radha. She fields in and sends in the return 106 for 5. And the last 4 overs and 5 deliveries coming up to complete the formalities of this game, as they need 104 from 29. And Frederick Erdick, she's the one playing Richa Sharma. She comes in from close to some bowls and she slocks the feet this man, not with much power and timing. Again, Mandana in business, Radha in business. And one more to the Netherlands team. They go up to 107 for 5. But I tell you, by all means, for a team like Netherlands, you know, this is a massive experience for them. One is to qualify for the World Cup. They'll be very happy if they win one game in these qualifying matches. Next ball is defended up to short mid-wicket. Mandana, obviously, rather Corin for Harmanpreet Kaur. She's the fielder. And Mandana probably will be strong contender for the player of the match in this game. And the game has been a bit disappointing in the second half, I can tell you. The first half was more entertaining and enterprising. Next ball, she gets a thick outside edge. She's going down towards no women's land. And they run just a single. It was not timed. A thick edge that went sailing in the air and fell between mid-on and deep mid-wicket. You could cross her for an easy single. So that takes in Netherlands up to 108 for 1. 3 singles in this over. Deepti's having a nice little time. She tosses this one nicely. Again, slog swept, not with any timing. So these swipes, it's been looking very ugly, isn't it? These slog sweeps hasn't been as elegant as it has been. And most international wickets now is Deepti from India, sharing with Goswami 355. Magic figure indeed. Next ball, she's lifted this one high, ever long gone, and it's gone for 4. Ye laga, abha ka choka. Well, that's a welcome boundary from a Netherlands team point of view. 42-4 in this game so far, and at the end of 16 overs, it's 5 down for 113. Winning is out of equation now, Goswami, but I'm sure they're going to play for pride. They're going to play with a lot of passion. And they're probably trying to narrow the gap and settle somewhere between 150 to 160 if all their wickets remain intact from a Netherlands point of view. But they'll be very happy if they win one game in the league games of this World Cup before they leave back for Netherlands.
1: 16 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर उठा दिया. इस गेंद को देखना है कि इसके पीछे फील्डर है कि नहीं, और इसके साथ ही ये कैच बहुत ही शानदार तरीके से एक और विकेट मिला है श्री चढ़नी को. और जिस तरह से श्री चढ़नी ने अपने ओवर की शुरुआत की थी और गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था, स्मृति मंधाना ने एक कैच और पकड़ा है. स्लॉट पे पड़ी थी गेंद और उसे उठा दिया था बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाई शॉट को. स्मृति मंधाना वहां पर खड़ी थी और एक शानदार कैच पकड़ते हुए इस बार एक और फ्रेडरिक ओवर डिस्क ने मात्र 9 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया. कॉट स्मृति बोल्ड श्री चढ़नी 7 रन. इस समय छठा विकेट आउट हो गया है, 6 विकेट गिर चुके हैं और अब पूरी तरह से दर्शकों में भी उत्साह, तिरंगा लहरा रहा है मैदान में वहां पर. और निरंतर इंग्लैंड की धरती पर जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे किसी भी मैच को वो से मैदान पे जरूर आते हैं. 97 रन की अभी भी जरूरत है नीदरलैंड्स को, लेकिन अब ओवर बहुत ही कम बचे हैं. एक तरह से मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है और अब राड आए हैं अगली बल्लेबाज के रूप में. अच्छी गेंद थी अंपायर की तरफ से, सर आरएस के साथ ही आउट, एक और विकेट मिला है. श्री चढ़नी ने इस गेंद को थोड़ा सा हवा में फ्लाइट किया था और DRS लिया है वहाँ पर. बल्लेबाज ने देखा कि जैसे ही उनको लगा कि कहीं उनका किनारा नहीं लगा है, श्री चढ़नी की गेंद को कट करना चाहती थी, लेकिन बॉल ने उनके बल्ले का एक बाहरी किनारा लिया या नहीं लिया यह अब DRS के ज़रिए तय होगा. लेकिन

0: भारत के खेमे में उत्साह, क्योंकि अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी थी और अब देखना है कि बहुत नज़दीकी मामला है उनकी बैट से लगी या नहीं। यहाँ से देखने पर तीसरे अंपायर के पाले में गेंद गई है अब, और जो मूल निर्णय है वो आउट का है अंपायर की तरफ से, और देखना है कि गेंद बल्ले से टकराई या नहीं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे ऋचा घोष ने लिया है, और अगर ये परिणाम में बदलता है तो एक और विकेट नीदरलैंड का गिर जाएगा। बैट से टकराई है और अंपायर ने अब जाके अपने निर्णय को वापस बरकरार रखा है, और अंपायर ने दूसरी बार तीसरे अंपायर की सलाह पर अपनी, देखते हैं उंगली उठाई या नहीं, लेकिन बल्ले लेकिन बैटर पेवेलियन की तरफ लौट रही हैं और धीरे धीरे कदमों से लौट रही हैं। अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से निर्णय को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा की गति से जब गेंद निकलती है कई बार तो ऐसा लगता है कि बैट से लगा है, लेकिन विकेट कीपर ऋचा घोष को पूरा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, और अब जाके निर्णय अंपायर का, उंगली ऊपर उठी और राड जो कि शून्य पर आउट होकर पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और सातवां विकेट नीदरलैंड्स का गिर चुका है। और अब सीजर्स आई हैं बीच मैदान पर, और ये श्रीचरणी लगातार दो विकेट ले चुकी हैं, हैट्रिक पर हैं। देखना है अगर वो ये कमाल कर पाती हैं कि एक विकेट और वो अगर अगली गेंद पर लेती हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर जुड़ जाएगी। 16.2 ओवर का खेल अब तक पूरा हो चुका है, 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर है, और अब कितने रन की आवश्यकता है सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि भारत कितनी जल्दी इस मैच पे विजय प्राप्त करती है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन गेंद मैदान पे लुढ़कती हुई जा रही थी, गेंद को फील्ड किया, एक रन और खाते में जुड़ा है। सीजर्स ने अपना खाता खोल लिया है 114 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष हैं, और श्रीचरणी अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कितना कुछ कर पाती हैं। सीजर्स ने 24 पारियों में 69 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कोई उनकी रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, और 20 गेंदों का खेल अब शेष रहा है, 96 रन की दरकार है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय दर्शकों में अपार उत्साह, तिरंगा झंडा भी फहराया जा रहा है, शोर करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये गेंद को खेला था, लेकिन गेंद टप्पे के साथ उछली थी हवा में और विकेट के बीच में आके उसको अपने हाथों में लिया था श्रीचरणी ने। ऐसा लगा था यहाँ पर दर्शकों को कि कोई कैच है, लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने बहुत सुरक्षित तरीके से खेला था, अगली गेंद अच्छी, और इस गेंद को उठा दिया है, देखना है गेंद बाउंड्री में क्या पार, जिसके साथ ही आउट। एक और विकेट गिर चुका है श्रीचरणी की इस ओवर में। देखा जाए तो 3 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं, लेकिन लगातार 3 विकेट लेते तो हैट्रिक होता, लेकिन इस ओवर में सफलतम 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स का स्कोर, और बहुत ही सफल ओवर जिसमें 3 विकेट उन्होंने श्रीचरणी ने लिए हैं, और एक तरह से बहुत ही शानदार जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि लॉन्ग पोजीशन पर फील्डिंग करती हैं उन्होंने कैच किया। आयरिश ज्वेलिंग 8 रन पर आउट हुई है, कॉट जेमिमा बोल्ड श्रीचरणी, और 114 रन 17 ओवर की समाप्ति पर नीदरलैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। विश्वनाथ,
1: वेल इट्स अ ट्रिपल विकेट ओवर इंडीड, रिमार्केबल फॉर हर, एंड शी इज गॉट फिगर्स ऑफ 4 for 19 फ्रॉम 4 ओवर्स। श्रीचरणी, शी इज हैविंग अ वंडरफुल टाइम with the ball, 4 for 19 from 4, very economical, and a complete grip on this game from an Indian point of view. Just the last 3 years to complete the formalities, and 2 wickets in hand. And Shefali Verma will bowl her last over, if I'm not wrong. No, yeah, that's right. In fact, first ball, she tries to whack it on the onside. They're all appealing for a stumping. It was so well collected by Richa, and she got the bales broken in a flash. It's been referred to the third umpire. It's been given out, indeed. It's been given out. Wasn't a late decision by the umpire, or he had some kind of a thing coming up from third umpire. I'm very stunned, actually. I've never seen anyone taking such a long time to give that out. Stumped, the second stumping of the game. And that's out, in fact. I can pick it up from the replay. And the right leg was in the air. Smiles in the Indian camp. Flurry of wickets have fallen in the last seven. Netherlands have lost four wickets in the last seven deliveries. And Silver Sieges, stumped by Richard off the bowling of Shefali Verma. She gets a second wicket. And she's got figures of 3 overs, 2 for 20. It should be effectively 3.1. She bowled the last five balls to replace that one. So, Vander Warning, she is the last batter in. Verma bowls and she defends. Unknowingly where the ball has hit the bat and it comes back to the bowler. So, small smiles all around the Indian camp. They'll be overall very satisfied with the performance. Been very clinical in the approach. Shefali bowls, tosses this one nicely. She's lifted in the air. Where is it going? Is she going to be caught? Oh, well taken indeed by the middle order player. In fact, Jemima Rodrigues. She's taken that catch, and so which means that Netherlands are all at indeed for 114, and they give India a big win indeed, as India win this game by 96 runs, and the last eight deliveries they lost five wickets. The last nine deliveries they lost five wickets. So it's been third catch by Jemima. So it's been a very, very clinical performance from an Indian point of view. They'll be overall satisfied. They'll be clashing on the points along with the Australians in this group. And I'll just give you the scorecard, you know, just to the benefit of our listeners and those who have just switched on the radio sets. India being sent in. They scored 209 from 20 overs. And when Netherlands team had a chance to bat, it was all the way, a pretty tough ask indeed. Heath Seegers was first to go out for 21, and then Mullenbrook out for 15, and then not great contribution apart from the captain, Leach. He got 28, and Callis got 18. Just give you the bowling analysis. Crandy Grode, 4 overs for 26, Sharma, 3 overs, 2 for 22, Shefali, 3.2 overs, 3 for 20, Shreyanka Patil, 1 ball, and she was badly injured. She twisted her ankle. And then we've got Sri Charani, 4 overs, 4 for 19. And Deepthi Sharma, 3 overs, 1 for 26. India won this game comprehensively by 94 runs. And now we'll be returning to the studios of All India Radio for the next program. Free Hit, player of the match. And we're going to have some serious, set of people, the team around. And we're going to have a flurry of questions too. So over to the studios of All India Radio.
2: Player of the match.

0: the surface and the conditions better,
1: mm-hmm.
0: and you see the results. But don't forget two great catches by Jamie.
1: Right, and that's a great sign as well moving ahead when you're ironing out your chinks in that fielding effort too. Vaishali, जिस तरीके से स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे विपक्षी टीम, क्या आप खुश हैं कि श्रीचरणी जल्द से जल्द फॉर्म में आ चुकी हैं? 50 ओवर्स में तो वर्ल्ड कप जीतना क्या होता है उन्हें मालूम है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में आप T20 वर्ल्ड कप में आप सही शुरुआत करना चाहते हैं, वो लय वो प्राप्त कर चुकी हैं।
2: जी बिल्कुल, और उसके साथ अगर श्रियंका पाटिल की जगह पे अगर श्रीचरणी डालती तो शायद हो सकता था ये मैच थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाता। एंड और ये जो हैट्रिक उनकी हुई है उससे अगर वो जल्दी आके एक बॉल डालती तो उस टाइम पे हो सकता है कि उनके विकेट थोड़े से और उनको मिल जाता, अपॉर्चुनिटी मिलती और तो उससे उनके लिए बेटर होता आने वाले नेक्स्ट मैच के लिए। एंड उसके साथ अगर ये मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में ही कि ये पिच स्पिनर्स के लिए है एंड वो श्रीचरणी ने करके दिखाया भी है।
3: भूप, हमने ऐसा ही कुछ देखा था पहले मैच में भी, पाकिस्तान के विरुद्ध भी 3 विकेट चटकाए थे और आज भी 4 विकेट अपने नाम किए।
4: देखिए, एक तो उन्होंने थोड़ी बॉल स्लो करी, बॉल को फ्लाइट दिया और उस पे उन्होंने इन द एयर बैट्समैन को बीट किया, उससे उनको ये 4 विकेट मिले हैं।
3: और इसी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का चयन हो गया है, आइए सुनते हैं और पता करते हैं कौन है प्लेयर ऑफ द मैच।
5: Player of the match, Miss Kavita Singh, Senior Vice President, Saudi Aramco, presents the medal to Smriti.
6: Congratulations. Thank you. Well played.
5: Smriti, congratulations. Back-to-back half centuries now in the tournament. What were conditions like out there today?
6: I think it was a good batting wicket for sure. I mean, whenever we've come to Leeds, I've played a few matches here for 100, but always good batting wicket and quick outfield. So, and again, I mean, Netherlands did a really good job today.
5: What's the key? Because you're playing against a team that it's the first time they're meeting at this level. How do you approach that?
6: Well, of course, it's like an unknown territory for all of us. We've not seen a lot of it. So we had to go through a lot of videos in terms of how they bowl and how, you know, we'll be approaching the game. And one thing we always pride ourselves that, you know, we don't take any team in a way where it's their first time or anything. I mean, I just thought they put up a really good fight. They fielded really well. And for us, it was just about focusing and doing the job for the team.
5: And for yourself, the good form continues. The key for this World Cup, with so many important games to come now, South Africa, Australia in this group, how are you set up personally?
6: Yeah, again, I wouldn't say I was middling the ball the way I would still. Still work in progress, but really happy the way Shefali batted today. You know, we had a good partnership and it was good to have her back among runs. And again, I mean, Srijani bowled extremely well. So for me, I mean, it's just about doing the right things, waking up every day, doing the right things and see how the match goes.
5: I got a couple of messages on my phone about some of those cover drives that you hit early on. You please a lot of people, you continue to do so. Congratulations.
6: Thank you so much.
3: About being hard taskmaster when it comes to herself, Smriti is quite a hard taskmaster as well, Suhas.
1: Yeah, no complaints whatsoever. Because when you have to survive at that level for that long a time, you become what in Hindi everybody calls a prerna srot, isn't it, sir? And you'd be happy about that, Colonel.
7: Oh, yes.
1: And why not? Because those cover drives are coming thick and fast. And again, early in the tournament, you're only looking for mojo and momentum. You'd be very happy with that, Sumitra.
0: Yeah, I mean, these are, you can say, the lesser matches. The bigger matches are going to come up. I mean, you could play South Africa and Australia. Those are the key matches, right? And that is the time when you get to middle the ball better, or jitna aap middle kariyega, the confidence barenge. Like she still says, she's still not happy after 250s. That's right. The hallmark of a top batsman.
1: Excellent.
0: They are not happy with scores. It's how you play the game, right? See, so much of it is in the mind. You know that, okay, today's Holland, so I'm going through, and even if I didn't score, somebody else would score. But these margin of errors, you know, when you go up progress and you're looking to play the semifinals, the margin of error goes down. And that is the time when these kind of players, like Smriti Mandhana, starts to feel it, that something is not quite right. And that's what she exactly said. So she has to improve. So has Shefali. Shefali showed great signs of improvement. Mm-hmm. See, you see that the way she scored the runs, not right. through the aerial route, but through the ground route and either side of the wicket. That's good. That's a great sign. But again, if you analyze the other batsmen, like we spoke in the middle session,
1: right.
0: all five batsmen threw their wickets, gifted their wickets. As far as the bowling is concerned, not much of spin. I think most of the Dutch batsmen played against did not find the right line mm-hmm. or missed the flight, and some of them were stumped. So, you see, it's a learning curve for the Dutch, but let's look at it from an Indian point of view. There's still a lot of scope to get better and better Indeed. Until you play the next set of matches.
1: Indeed. You mentioned about Shefali being absolutely wonderful down on the ground with those shots as well. The efficacy of Shefali with the bat in hand just cannot be questioned. Lekin Shefali, jo gendbazi mein unhone aaj damkham dikhaya, jo unko third over mila tha, Harman ne jab unko ball thamaya tha, उनके कैप्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके फलस्वरूप में विकेट भी मिला था शेफाली को.
2: शेफाली वर्मा सिर्फ यही नहीं, वो आप कहीं भी देखेंगे कि इंडियन टीम के इंडिया ए टीम में भी वो बॉलिंग करती है एंड वहां पर भी वो इसी तरह का एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और वहीं से वो कॉन्फिडेंस यहाँ इंडियन टीम में उनके लिए बिल्ड होके आया है. एंड जो आज उन्होंने बॉल डाली है उस पर उन्होंने उनको रीड करना इतना इजी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएशन में बॉल नहीं डालते, वो दो वेरिएशन में बॉल डालते, एक वो ऑफ स्पिन डालते, एक वो टॉप स्पिन भी डालती है. तो उसमें डिफरेंस है दोनों में. टॉप स्पिन में थोड़ा सा बैटर को डिफिकल्टी होती है जज करने में एज कम्पेयर टू ऑफ स्पिन. सो उसमें जब उनको बॉल विकेट मिली थी तो वो उन्होंने टॉप स्पिन करके बॉल डाली थी एंड वो हल्का सा हम कह सकते हैं कि स्लाइटली उनको एक टर्न मिला था उस टाइम.
0: I just want to add to what she said by Sally, ki, you know, it reminds me of Sachin Tendulkar, the bowler. Ki exactly same kind of run up, more or less the same kind of build up, and you know, he could do anything with the ball. He could leg spin, off spin,
1: right.
0: Flippers, God knows what I've seen him play in Hero Cup finals, and he would get wickets. And sometimes the match winning wickets would always go by Sachin, I think. But yes, I'm not comparing Sachin and Shefali. But it's still big praise. Lot of praise that, you know, she can do a lot of things with the ball. And that's why Harmanpreet would often go back when, you know, when Patil was injured and she left, she filled over, I think. And she did a pretty good job.
3: Talking about finals, well, Shefali did get wickets for India in the ODI World Cup final as well. In the meanwhile, in our show, there's time for our listeners to chip in with their questions and comments. Remind you, our numbers are 011-234-21084 and 1085. Abhi, jo pehle shrota jode hain, unse baat karte hain. Namaskar.
7: Namaste, madam.
3: Ji, apna parichay dijiye. Main
7: Haseena ki matri ko main Palghar ka Indore se.
3: हसीना जी, क्या सवाल है आपका?
7: सवाल कुछ नहीं, मेरे बदली देना चाहती हूँ आप लोग समझिए ना, उसके वजह से महिला भी भूख ज्यादा सफल क्यों खाना पीना छोड़ देते हैं आखिरी का ओवर तक. और वंदना की मरीज जी के आपका कमेंट्री बहुत ध्यान की सुन रही है.
3: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं. तो श्रेयंका पाटिल के एब्सेंस को फिल किया जरूर शेफाली ने, लेकिन श्रेयंका को जो इंजरी हुई अभी जो दिख रहा था और जो हमने सुना काफी प्रॉब्लम में दिखी वो एंकल उनका.
0: ये नहीं कि हमारे पास बैकअप नहीं है, वी हैव एनफ बैकअप, बट वी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू नो शी कम्स बैक फिट एंड फाइन एंड द बेंच रिमेन्स एज स्ट्रॉन्ग एज एवर. But that we'll only know after the reports come out later in the day.
1: हमारे listeners के पास दिव्य दृष्टि तो है. किसी ने सवाल पूछा था किसी ने कि राधा यादव कहाँ हैं, कहाँ क्या कर रही हैं, उन्हें सदस्य रहना चाहिए था 11 की, अब बन सकती हैं क्योंकि श्रेयंका is nursing an injury. But it's good news for India, you think, Vaishali? Because even though Shriyanka might miss out on action, Sri Charni is doing well. She's already a part of the side.
2: या राइट. एंड उसके साथ अभी जैसे आपने राधा यादव की बात की है, उसमें एक बेनिफिट और मिल गया हमें कि श्रेयंका पाटिल के पास उतनी बेटर बैटिंग नहीं है क्योंकि हमने अभी तक अगर उनका रिकॉर्ड देखे पेपर्स पे तो उनका सिर्फ एक ही 50 उनके बैट से. एंड राधा यादव के पास काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ साथ बैटिंग का लाइनअप भी है, तो वो चीज मैटर करती है और वो बेनिफिट दे सकती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट.
1: इंडीड, जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं यू वांट द पीपल विद गुड

0: from South Africa will be very, very tough.
1: Right, I think that's...
2: A lot will depend on the type of wicket that is provided. And in case it is a slightly spinning wicket, we have a good chance of beating South Africa.
1: All right, because Lees will also be waiting to rip the ball. So Shabnam Ismail is again someone who's quick when there's a little bit offerings from the surface. Now let's go to our listener. Ji, aap kahan se call kar rahe hain? Bataiye, aapka parichay dijiye.
3: हाँ जी आदाब नमस्कार
1: नमस्कार
3: जी मैं मुस्तकीम उदा बोल रहा हूँ गुजरात से
1: जी बताइए आपका सवाल क्या है
3: जी पहले तो भारत मैच जीता बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को और ऐसे ही आगे भी जीतते रहे बहुत ही उम्दा प्रदर्शन टीम का
1: शुक्रिया सर
3: और एक हमारे खिलाड़ी आज इंजर्ड हो गई तो क्या उसकी आगे कमी खलेगी
1: राइट श्रियंका पाटिल के इंजरी के बारे में पूछ रहे हैं
3: रेडियो पे दे रहे हैं हेलो सर
1: जी बताइए
3: आप रेडियो पे कमेंट्री दे रहे हैं हम आपके शुक्रगुजार हैं लोकल रेडियो स्टेशन तमाम रेडियो पे कमेंट्री आ रहे हैं मीडियम में भी उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं
1: बहुत बहुत शुक्रिया नहीं बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे लुत्फ उठाते रहे हम यही उम्मीद करेंगे वैशाली आपसे रहेगा ये सवाल फिर कि श्रियंका पाटिल की कमी क्या खलेगी अब इंडिया को
4: कहने के लिए खल सकती है लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है अभी राधा यादव एंड वो बेटर फील्डर भी है जैसे मैंने बोला कि बैटिंग भी करती है वो तो हमारे पास उसे उनसे थोड़ा सा बेटर राधा यादव है एंड वो इम्प्रूव भी कर रही है उनकी हम देखें तो उनकी बैटिंग पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है एंड बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेटर एंड क्रिप के साथ जो बॉल डालती है तो वो काफ़ी अनप्लेएबल बॉल होती है एंड अगर हम बात करूँ बैटिंग के लाइनअप की जो अभी आप बात कर रहे थे थर्ड डाउन की बट हमारे पास मिडल ऑर्डर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है और वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए हम उनके अगेंस्ट जब खेलेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक हो सकता है क्योंकि मिडल ऑर्डर को बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी दो लास्ट टू मैच से दिख नहीं रहा है नॉट लास्ट मैच तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर यास्तिका भाटिया या भारती की जगह जो भी खेलता है नेक्स्ट मैच में उनकी जगह पे हरमन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर जैमी
5: बिल्कुल और हमने देखा है कि भारत जब विकेट्स लूज करता है तो वो क्लस्टर में लूज करता है खास करके मिडिल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज गवाई थी लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 4-1 से उस श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को अभी कंडीशंस काफी अलग होंगे लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम नेट रन रेट में काफी पीछे भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबलों को बहुत अच्छे से बुनाया है इस वर्चुअल नॉकआउट से पहले भू
2: नहीं हमारी टीम अच्छा खेल रही है दोनों जो मैच जीते हैं वो बड़े कन्विंसिंगली हमने जीत लिए हैं एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न्ड उनका अभी शबनम इस्माइल हैज जस्ट कम बैक इनटू द टीम फ्रॉम रिटायरमेंट सो दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज शी इज बॉलिंग क्वाइट वेल शी प्लेज इन द WPL शी नोज ऑल आर बैट्समैन बैट्सवुमन सो मेरे को लगता है कि अगर हम शुरू के जो हमारे जो बैटर्स हैं वो 6 ओवर निकाल लें आराम से विदाउट लूजिंग मोर देन 1 विकेट then we can get a good score against South Africa and then put them under pressure with our bowling. Bowling is quite good as far as the spinners are concerned.
5: Absolutely. और वॉल्फार्ट शानदार फॉर्म में है पिछले साल विश्व कप में 50 ओवर के विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी भी रन बनाने की मशीन बनी हुई है
0: क्वालिटी बैट्समैन है देखिए पेडिग्री जो है ना वो आपको दिखेगा रिगार्डलेस कि कौन फॉर्मेट में वाइट बॉल खेल रहे या रेड बॉल देखिए मंदाना हरमनप्रीत मिताली राज पहले थे इन तो दे हैव क्वालिटी और क्वालिटी जिस बैट्समैन में पेडिग्री और क्वालिटी है दे कैन प्ले इन एनी फॉर्मेट ऑफ द दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग कि नंबर 3 में कौन बैट करना चाहिए राइट बिकॉज टुडे यास्तिका डिड नॉट गेट द रन्स एज डिजायर्ड बट दीस काइंड ऑफ मैचेस आर वेरी वेरी क्रूशियल देयर नोबडी विल लुक नॉट लुक एट रन रेट्स दे विल लुक एट विक्ट्री 2 points right so it is very very important that you know you go with a proper mindset aur is tarah ka match hum jeetne ka koshish karenge not about run rates
1: it brings us to a very interesting point at this stage on the 21st colonel it's going to be the indian bowlers versus south african batters or do you think the south african bowlers versus the indian batters what do you think will be the bigger battle on that day
2: I think the bigger battle would be the south african bowlers versus the indian batters and I hope we do well okay. and score over 150 and put them under pressure with our spinners
5: और हमने देखा है कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी में काप जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि बल्ले से योगदान आ रहा है लेकिन गेंदबाजी में उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है साउथ अफ्रीका को।
4: गेंदबाजी की बात करूं तो उसमें कहीं ना साउथ अफ्रीका का जो हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे अगर देखा जाए तो फील्डिंग ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों साइड के बैटर बहुत अच्छे हैं एंड स्पिनर एंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बहुत काफी है। बट यहां पे डिफरेंस होगा सिर्फ आपकी फील्डिंग को लेकर कि आप कैचेस को कैसे ग्रैब कर रहे हैं। आप फोर, जहाँ पे आप फोर को स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पे आप टू रन्स दे रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है फील्डिंग के अंदर। एंड साउथ अफ्रीका टीम के साथ हमें यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रन्स जितने कम से कम दे सकते हैं उनको, वो तभी आप आगे जीत के लिए जा सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक चीज और ये कहूंगी कि जैसे आज नंदिनी शर्मा ने बॉल डाली, आउटस्टैंडिंग बॉल डाली, बट उसके साथ अगर हम उन दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं लेग साइड पे बॉल जा रही थी एंड वो हमें इम्प्रूव करनी है। जब जीत हमें मिलती है तो हम गलतियां भूल जाते हैं, बट गलतियों को देख के अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो कहीं वो हमें नेक्स्ट मैच के लिए विन दे सकती है।
1: इंडीड, और नंदिनी शर्मा की आपने जब बात की तो कीपर ऋचा घोष उनके लिए आगे खड़े हुए थे क्योंकि बल्लेबाज चहलकदमी करने पर उतर आए थे ताकि झूलती हुई गेंद को बेहतर संभाल सकें। क्या आगे जाते हुए भी हम इन कंडीशंस में इसी पैतरे को आजमाते हुए देखेंगे ऋचा घोष स्टैंडिंग अप?
4: जी बिल्कुल, ऋचा घोष मैं हमेशा बोलती हूँ इंडियन टीम के लिए बेस्ट है एंड उनकी बैटिंग ही नहीं, उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो कहीं भी लेग साइड हो या ऑफ साइड हो वो हर जगह पे आपको डाइव लगाती हुई नजर भी आएंगी एंड वो जिस तरह से अपना माइंड सेट रखती हैं उस तरीके से वो बॉल भी डलवाती हैं बॉलर्स को। वो इशारे से जो एक इशारा देते हैं हम विकेट कीपिंग की जगह पे खड़े होके, वो बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एज एक टीम के लिए कीपर बैकबोन होता है, क्योंकि वो एक कीपर वहां पिच पे खड़े होके पूरी फील्ड सेट कर सकता है, सबको देख सकता है, उसके लिए वो सबसे इजी पॉइंट है वहां पे खड़े होके चेक करना।
1: All in all, a great win for the Indian side, and now they'll be putting their feet up and watching Pakistan take on the South African bowlers especially, so that they are better prepared and they do their homework for the next game on the 21st. Megha?
5: Absolutely. Indian team would now turn its attention on making all the notes. वैशाली यूज द वर्ड इशारा, हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा आ गया है इसी बात पे कि इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि 21 जून को हम वापस आएंगे। सुहास आपका धन्यवाद, हमारे विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर शहनवाज खान ने उठाई, और प्रोडक्शन टीम में इंजीनियर्स हैं मनोज अजय राणा और आर यादव, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं तन्मय पंत, अमीशा पटेल और कविता। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का यहां पर समापन करेंगे, वापस लौटेंगे 21 जून को भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले के साथ। जुड़ते हैं आपके साथ शाम 6:30 बजे।
6: प्लेयर ऑफ द मैच,
7: अभी आप आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
8: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।